0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इब्ने इंशा की कलम और जगजीत जी की आवाज में हमने सुनी ये खूबसूरत गजल। और नए साल के इस नए से मिर्ची महफिल में आपका इस्तकबाल करता है आपका ताशी। हाँ जी, और चांद का इस्तेमाल तो आपने कई बार सुना होगा शायरी और कविताओं में, लेकिन आज आपको बताऊं चांद का एक पर्यायवाची, बोले तो सिनोनिम, जिसका इस्तेमाल करके भी कई सारे शेर हुए हैं, और वो लफ्ज है मेहताब। अब इसका इस्तेमाल आप देखें दो शेरों से। पहला अजहर इनायती साहब की कलम से लिखते हैं कि हर एक रात को महताब देखने के लिए मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए। वाह जी वाह, हबीब जालिब के यहाँ भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है चांद के सिनोनिम महताब का। गजल के दो शेर मुलायजा फरमाएं कि हमारी भी संभल जाएगी हालत, वो पहले अपनी जुल्फें तो संभालें, निकलने को है वो महताब घर से, सितारों से कहो नजरें झुका लें। आए हाय, अब चांद से डिराइव्ड एक और लफ्ज है चांदी, जिसके बड़े खूबसूरत इस्तेमाल के साथ आप सुने जफर गोरख पुरी साहब का लिखा अगला आइकॉनिक नगमा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। पंकज उदास साहब की आवाज में सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स

0: बाकी सब गंगा।
1: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
2: हेलो,
3: मिल गया मैडम। आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम। मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल
3: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू, बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Energy, it's hot.
1: हाय, ये दिल, ये पागल दिल मेरा, मोहसिन अली नकवी साहब की कलम और गुलाम अली साहब की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल सिर्फ मिर्ची महफिल पर. और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू करवाए उर्दू के पहले सबसे बड़े शायर जिन्हें खुदाए सुखन मतलब शायरी का खुदा कहा जाता है. मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन मीर तकी मीर साहब की. 1810 के लखनऊ में इनका जन्म हुआ और लफ्जो मानी के जादूगर बेमिसाल शायर मीर तकी मीर उर्दू गजल का वो प्रेत हैं कि जो उसकी जकड़ में आ जाता है जिंदगी भर वो उसके अधीन ही रहता है. बड़े आइकॉनिक शेर रहे हैं उनके जिनमें से कुछ आपके नजर कर रहा हूं. लिखते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया. तदबीरें मतलब टैक्टिक्स. उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया. देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया. एक और मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है उनका कि होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर. होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर क्या रब्त मोहब्बत से उस आराम तलब को. वाह जी वाह, उनकी शायराना काबिलियत का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि जमाने के मिजाजों में बदलाव के बावजूद उनकी शायरी की महानता का सिक्का हर दौर में चलता रहा. खैर, बहुत हुई बातचीत, ज्यादा वक्त जाया करे बगैर राजेश रेड्डी साहब की कलम और हरिहरन जी की आवाज में सुनते हैं अगली गजल हल्का सा एक नशा सा सिर्फ मिर्ची महफिल पर. आपका ताशी है आपके साथ. इट्स हॉट.

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: नुसरत साहब की आइकॉनिक आवाज में हमने सुना ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और आपका ताशी है आपके साथ। और दर्द हल्का हल्का हो या सुरूर, दोनों ही हालतों में दर्दीले लोगों को बड़ा मजा आता है। गुलजार की वो गजल याद आती है मुझे कि दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है, आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। वाह जी वाह। और ये जो हल्का सा दर्द है ना, कुछ तो रिलेशन है इसका और रात का। जैसे जैसे रात और काली होती जाती है, ये दर्द और बढ़ता जाता है। अगला नगमा सुने मखदूम मोहियुद्दीन साहब की कलम, लता जी और तलत अजीज की आवाज में, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू के हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए एट मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट और उससे भी उम्दा गजल हमने सुनी भूपिंदर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में। और अब वक्त आ गया है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: की। मिर्ची महफिल में आपका ताशी आपको सुनाए एक गजल जो उसके जहन में अटकी पड़ी है। बिल्कुल। और ये जो गजल है ये बहादुर शाह जफर साहब ने लिखी थी और इसको गाया है मेहंदी हसन साहब ने। एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से, मेरी बड़ी पसंदीदा है, तो अगर कुछ भूल चूक हो माफ करिएगा। पेश खिदमत है सिर्फ आपके लिए।

इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए अगला नगमा पेश है आपके लिए शफकत अमानत अली की आवाज में, फिर ले आया दिल। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मुजफ्फर वारसी की कलम और हरिहरन साहब की आवाज में हमने सुनी गजल, झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी, सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी। और मिर्ची महफिल पर अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि अपनी डायरी के कुछ सफ़े पलटूं और आपको सुनाऊं एक पुरानी याद। हमारी जो हिंदी टीचर थी ना कविता मैम, वो बचपन में एक फ्रेज सिखाया करती थी कि जीवन क्षण भंगुर है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन हुआ लाइफ इज मोमेंट्री, ठीक है। और जिंदगी के सुख दुख, हंसी और आंसू, शोहरत और बदनामी, सब कुछ फेड हो जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं जहन में घर कर गई और थोड़े बड़े हुए तो जफर इकबाल साहब को पढ़ा और उनका ये बड़ा ही बेहतरीन शेर मुझे याद आता है इसी बात पर। लिखते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ओफो, मतलब इतना सटीक धारदार शेर लगता है ना मुझे ये। खैर, आए अगला नगमा सुनते हैं जावेद अख्तर साहब की कलम से, चित्रा और जगजीत जी की आवाज में, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: जफर गोरखपुरी साहब की कलम और पंकज उदास जी की आवाज में हमने सुना नगमा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे। किस्सा कॉर्नर
1: की आपका ताशी सुनाए आपको आज का किस्सा, जो आ रहा है जिगर मुरादाबादी साहब की जानिब से। किस्से का नाम बंदों की खुशी। एक बार जिगर, शौकत थानवी और मजरूह सुल्तानपुरी दोपहर के वक्त कहीं काम के लिए बाहर निकले थे, तो इरादा किया गया कि नमाज अदा कर ली जाए। शौकत साहब एक काम के लिए चले गए, जिगर साहब मस्जिद के बजाय एक रेस्टोरेंट में जा घुसे। मजरूह ने कहा, जिगर साहब ये मस्जिद नहीं रेस्टोरेंट है। जिगर ने जवाब दिया, मुझे मालूम है, सोचा कि वक्त तंग है, अल्लाह को तो खुश कर नहीं सकता, उसके बंदों को ही खुश कर लूं। आइए। वाह जी वाह, काश हमारे दोस्तों में भी इतना सुहूर होता जिगर साहब जैसा, कि बिना मांगे पार्टी दे देते, है कि नहीं। खैर, मजाहिया बातों से आगे बढ़ते हैं लता जी की आवाज में रेंडर्ड एक खूबसूरत नगमे की ओर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: मिर्ची साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: वाह, अहमद फराज की कलम और मेहंदी हसन साहब की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल रंजिश ही सही हमने सुनी सिर्फ मिर्ची महफिल पर, और आपका ताशी है आपके साथ। और अब जब भी मैं ये गजल सुनता हूँ ना, मुझे लगता है लोग कितने अजीब होते हैं। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, मतलब दुख भी सहने को तैयार है। पीरजादा कासिम साहब की एक बड़ी रिलेटेबल गजल याद आती है मुझे, वो लिख गए कि गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, दर्द में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। अरे यार, ये तो वही बात हो गई कि ब्लॉक करके फिर अनब्लॉक कर दिया। खैर जानी, ऐसे ही अजीब अगर आप भी हो ना, तो आइए साथ मिलकर सजाएं ये खूबसूरत महफिल सिर्फ मिर्ची पर अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: ठुकराओ अब की प्यार करो, मैं नशे में हूँ। शाहिद कबीर साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये उम्दा गजल हमने सुनी सिर्फ मिर्ची महफिल पर, और आपका ताशी है आपके साथ। और कोई जब किसी शख्स को छोड़ जाता है, हर इंसान अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, अलग अलग वक्त लेता है उस सदमे से उबरने के लिए। लेकिन अगर एक बात मैंने पाई है वो ये है कि उबर सब जाते हैं। स्वप्निल तिवारी साहब का एक शेर जहन में आता है जो इस नए साल और बिछड़े यार दोनों मौजू पे फिट बैठता है। वो लिखते हैं कि और कम याद आओगी अगले बरस तुम, और कम याद आओगी अगले बरस तुम, अब के कम याद आई हो पिछले बरस से। वाह, मैं पता है लगभग भूल गया था इस शेर के बारे में, मगर उसकी याद आई तो साथ ही ये भी आ गया। खैर, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये अगला नगमा सुने आप। इट्स वेरी आइकॉनिक ऑब्वियसली। सानू एक पल चैन ना आवे, सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: शहरयार की कलम और तलत साहब की आवाज में सुनी हमने खूबसूरत गजल जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आज के लफ्ज से, रफ्ता, जिसका मानी होता है स्लोली या धीरे। अब तस्लीम फाजली साहब की लिखी और मेहदी हसन साहब की गाई मशहूर गजल का ही एग्जाम्पल ले लें। शेर है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, मतलब धीरे धीरे वो मेरी हस्ती, मतलब बीइंग का सामान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। और अब एक और शेर देखें खुमार बाराबंकवी साहब के जानिब से, लिखते हैं कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए, आए हाय। तो ले जस्ट लाइक दैट आपके उर्दू लफ्जों के आर्सेनल में जुड़ गया है एक नया लफ्ज, रफ्ता, मानी स्लोली। ऐसे ही और लफ्जों को समझने जानने के लिए जुड़े रहें मिर्ची महफिल से। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: आनंद बख्शी जी की लिरिक्स और सुरेश वाडेकर साहब की आवाज में हमने सुना सनी मूवी से नगमा और क्या अहदे वफा होते हैं, और मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और इश्क मेरे ख्याल से ना वो बीमारी है जिसमें शख्स जब पड़ता है तो उसका इलाज ढूंढने के बजाय और बीमार होना चाहता है। अकबर इलाहाबादी साहब का एक बड़ा उम्दा शेर है कि इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई तो है, पर करूं क्या, अब तबीयत आप पर आई तो है। मुनव्वर राणा साहब के यहाँ भी इश्क को एक बीमारी की तरह ट्रीट किया गया है। वो लिखते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। उफ, अगली गजल में आप मुलाकात करेंगे एक बीमार से जो पूछ रहा है दूसरे से कि तुम भी बीमार हो कि नहीं। कैफी आजमी साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई, मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। फरीदा खानम जी की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल। समय हो चला है मेरे जाने का, लेकिन ऑब्वियसली जाने से पहले
2: मिर्ची महफिल पे अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आप हैं अपने ताशी के साथ, और ये मेरा ख्याल है कि सच्चाई सबसे ज्यादा उदास होती है। कुछ गजलें जो सबसे ज्यादा सच कह रही होती है ना, सबसे ज्यादा ट्रूथफुल साउंड करती हैं, वो ऐसे कचोट देती हैं अंदर से ना एकदम। ये गजल उनमें से एक है और न जाने क्यों मेरे जहन में अटकी हुई है। तो आज रात आपके नजर है जगजीत सिंह जी की ये खूबसूरत गजल मिर्ची महफिल पर।

0: कोई जवाब है आपके पास?
1: मेरे पास तो नहीं है दोस्त, तो इसलिए मैं चुपचाप यहां से अपना सामान बटोर के चलने वाला हूं। एक गजल के हवाले करके आपको छोड़ जाने वाला हूं मैं। अगर आपको मुझसे कुछ बातचीत करनी हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून टू मिर्ची। मिर्ची महफिल सुन रहे थे आप। आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करें, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए एट मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जनरली ना गुलजार साहब आंखों से बहुत खिलते थे, लेकिन इस गाने में, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग्स ऑफ आंखें, ये आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, गुलाबी आंखें। नोबडी एवर थॉट कि आंखें भी गुलाबी हो सकती हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम। ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म द ट्रेन, एंड ये काका की यानी राजेश खन्ना साहब की कंसेक्यूटिव 17th फिल्म थी, विच वाज अ सुपर डुपर हिट। उस समय ना काका का सिक्का एकदम बॉक्स ऑफिस पे चल रहा था, एवरीबडी वांटेड टू वर्क विद राजेश खन्ना। सो इस फिल्म को राजेंद्र कुमार ने प्रोड्यूस किया था और नंदा जी ने इसमें काम किया है। सो नंदा जी उस टाइम पे ना राजेश खन्ना के साथ काम कर रही थी, एक फिल्म आई थी इत्तेफाक पे, लेकिन उनके बहुत सारे सीन्स नहीं थे, बट शी अंडरस्टूड कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। तो उन्होंने ना जाकर के बात राजेंद्र कुमार को कही कि अब ये जो फिल्म बना रहे हो ना द ट्रेन, इसमें भाई इन्हीं को लो, यानी काका राजेश खन्ना को लो, वो बॉक्स ऑफिस पे इस समय धमाल कमाल मचा रहा है। सो दैट वॉज हाउ राजेश खन्ना केम इन द पिक्चर। एंड देन जब ये फिल्म रिलीज हुई, ओहो हो द ट्रेन, इट वॉज अ सुपर डुपर मैसिव हिट। इसी फिल्म का गाना श्रेया ने आते ही सुनाया। अगले कौन से गाने, सब एक एक करके सुनाऊंगी, जल्दी किस बात की है। ये पूरे 3 घंटे पुरानी जीन्स के ऑन मिर्ची, आपके नाम मेरे नाम। सो कम राइट बैक।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मिर्ची पर आप और श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स। बॉबी फिल्म का ये गाना जिसको शैलेंद्र सिंह ने गाया, आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। एंड जब बॉबी फिल्म की बात आती है ना, तो ऑफ कोर्स मैं तो थी नहीं जब ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन मेरी मम्मी बताती है कि क्या क्रेजीनेस हुई थी टू वॉच दिस फिल्म। आई मीन देयर वर फैमिलीज जो वापस बार बार जा रही थी मूवी देखने, हॉल्स भरे हुए थे महीनों तक। एंड इतना ज्यादा ट्रेंड चला था बॉबी जूड़ा पिंस का, जो मुझे लगता है मुझे आज भी कई बार दिखती हैं वो जो जूड़ा पिंस है। सो शी सेड कि बॉबी नाम पे इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए थे कि एवरीबडी वाज वेयरिंग कोई ना कोई बॉबी का प्रोडक्ट। जैसे कि बॉबी में यू नो डिम्पल कपाटिया ने बहुत जगहों पे पोलका डॉट्स पहने, वो आज तक फेमस है एज बॉबी पोलका डॉट्स। जैसे कि बॉबी जूड़ा पिन तो मैंने आपको बताई, जैसे कि बॉबी बाइक जिसपे उड़ा के लेकर के जाते हैं ना ऋषि कपूर डिम्पल कपाटिया को, वो बाइक भी एक्सट्रीमली फेमस हुई थी और रातों रात उसकी बिक्री बढ़ गई थी। ये होता था उस जमाने की फिल्मों का क्रेज जो इस जमाने में नहीं मिलता, करेक्ट। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ उस जमाने के गाने, इस जमाने की श्रेया। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

किशोरदा ना बाकी सबके लिए रूल्स फॉलो करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता था कि ये गाना उनके दोस्त पे पिक्चराइज होना है तो फिर सारे रूल्स ड्रॉप। वेल, ये जो गाना अभी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म नमक हराम, विच इज पिक्चराइज ऑन काका यानी राजेश खन्ना। और काका और किशोरदा और पंचमदा, इन तीनों की तिकड़ी भाई इंडस्ट्री में धमाल कर रही थी, कमाल कर रही थी। काका का ये रूल था कि उनके सारे गाने किशोरदा गाएंगे, और किशोरदा भी हैप्पीली अपने दोस्त के लिए सारे गाने गाते थे। मतलब बाकियों के लिए तो उनके पास फिर भी रूल्स थे कि क्या गाने का पैसा ऑलरेडी एडवांस में पे हो चुका है, जब हो जाता था तभी वो रिकॉर्डिंग सेशन में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अंदर घुसते थे। लेकिन जब बात होती थी काका की तो ये सब कुछ नहीं पूछा जाता था। वन मेजर रीजन वॉज ऑल्सो बिकॉज बोथ ऑफ देम सॉ द सक्सेस इन देयर करियर्स टुगेदर। वो गाना है ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आर डी बर्मन साहब ने ये गाना कंपोज किया और इसको गाया ऑफकोर्स किशोरदा ने। और इस पे ये किस पे पिक्चराइज था, काका पे। सो होता ये है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो इससे पहले किशोरदा ने जितने गाने गाए थे ना वो इतने पॉपुलर नहीं हो रहे थे। आर डी बर्मन साहब ने उनसे कहा था, किशोर बस ये आखिरी गाना है, अगर तुमको इस गाने के साथ सक्सेस नहीं मिली तो तुम्हें जो करना है करना, अगर तुम्हें अपने गांव वापस जाना है तो वहां भी ले जाना। लेकिन इस एक गाने ने किशोरदा की तकदीर बदली एंड ऑफकोर्स काका बिकेम अ सुपरस्टार। पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। सो कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो है ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया अमा पनवा चटाई के जब धमाल करें कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज only on Mirchi it's hot।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रेखा जी और विनोद मेहरा की ये फिल्म का गाना है जो अभी अभी मैंने आपको सुनाया, पुरानी जीन्स पे, आप और श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची। एंड ये गाना इज फ्रॉम द फिल्म घर, जिसमें रेखा जी थी, विनोद मेहरा थे। लेकिन रेखा जी से पहले इस फिल्म की एक्ट्रेस होने वाली थी मौसमी चैटर्जी। मौसमी चैटर्जी और विनोद मेहरा का उस टाइम पे ना बड़ा रूमर्स थे कि दे आर सीइंग ईच अदर। और भाई उस टाइम तो फिल्म मैगजीन्स ऐसे छटपट बिकती थी कि पूछो नहीं। सो हर फिल्म मैगजीन में उनके बारे में लिखा जा रहा था। मौसमी चैटर्जी को लगा कि भाई ये तो बेसलेस है, एंड अगर मैंने इस समय विनोद मेहरा के साथ काम किया तो फिर इन रूमर्स को और हवा मिल जाएगी, एंड दैट्स व्हाई शी डिनाइड डूइंग द रोल। और फिर ये गया रेखा जी के पास, जो उस समय इनिशियली अपना करियर बिल्ड कर रही थी, और जैसे ही उनको ये गुलजार साहब की फिल्म मिली उन्होंने झट से पकड़ ली। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ किशोरदा का ये गाना था, अब आ रहा है किसका गाना, ये बहुत अलग गाना है, खुद सुन लो।

0: Radio Mitri, New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मनमोहन देसाई की डायरेक्टेड ये सुपर हिट फिल्म जिसका गाना अभी आपको सुनाया, दिस इज फ्रॉम द फिल्म अमर अकबर एंथनी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग गुफा पे इस फिल्म में बताती हूँ आपको व्हाट हैपेंड। तो अगर आप ये फिल्म देखोगे ना, सो नीतू सिंह और ऋषि कपूर का जो इंट्रोडक्शन सीन है उसमें नीतू सिंह प्लेज अ डॉक्टर रोल। इस डॉक्टर का कैरेक्टर नेम है डॉक्टर सलमा। लेकिन जब ऋषि कपूर नीतू सिंह से पहले सीन में मिलते हैं तो वो उन्हें डॉक्टर सलमा नहीं कहते, वो उन्हें नीतू कहते हैं। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज कि मूवी की एडिटिंग हो गई, मूवी रिलीज हो गई, देयर वाज नो एफर्ट टेकन टू एक्चुअली यू नो रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। मतलब लोगों ने बस जाने दिया कि हाँ ठीक है, ऐसा तो पॉसिबली नहीं है कि इस गूफअप को जो हम सब नोटिस कर सकते हैं वो किसी ने नोटिस नहीं किया हो। ऑफकोर्स डायरेक्टर, कैमरामैन या एडिटर किसी ने तो किया होगा, बट उस टाइम के लोग ना इमोशंस पे ज्यादा जाते थे मुझे ऐसा लगता है, रादर देन यू नो गोइंग बाय द बुक्स कि इस चीज को ऐसे ही शूट करना है, उस चीज को ऐसे ही शूट करना है। अरे फ्लो में निकल गया यार, इमोशन तो इंटैक्ट है। पुरानी जीन्स में, दिस इज मी श्रेया, कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सूरज भड़जातिया ने नूतन जी को प्रॉमिस किया था कि उनके बेटे का कैरेक्टर बहुत ही सॉलिड निकलेगा, इवन दो ही इज प्लेइंग द व्हाट डू आई से, ही वाज एक्चुअली प्लेइंग एन एजुकेटेड विलेन. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, एंड ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म मैंने प्यार किया. इसमें अपना डेब्यू करने वाले थे मुनीश बहल. डेब्यू क्या, उससे पहले भी उन्होंने फिल्में की थी जिसमें ही वेंट अननोटिस्ड. अब ये सूरज भड़जातिया की जो फिल्म थी जिसमें सलमान खान अपना डेब्यू कर रहे थे, भाग्यश्री अपना डेब्यू कर रही थी, उसके बीच में नूतन जी का बेटा जो है वो विलेन का कैरेक्टर प्ले करेगा, ये बात नूतन जी को समझ नहीं आ रही थी. तो उन्होंने ना सूरज भड़जातिया जो कि उनके बहुत क्लोज दोस्त थे उनसे जाकर के रिक्वेस्ट की कि क्यों नहीं मेरे बेटे का रोल चेंज कर दे रहे हो, उसे कोई और रोल दे दो, उसे वो दोस्त वाला रोल दे दो, सलमान के फ्रेंड वाला. लेकिन सूरज भड़जातिया ने कहा कि तुम्हारे बेटे का रोल विल बी एच्ड इन हिस्ट्री, लोगों को याद रहेगा, मैं इतना सॉलिड बनाऊंगा. एंड इट एक्चुअली हैपेंड. मनीष बहल का रोल इन दिस फिल्म वाज आइकॉनिक, मतलब लोगों को आज भी याद है. लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म का पहले नाम होने वाला था राग रागिनी, लेकिन फिर ऋषिकेश दा को लगा कि नहीं यार, कहीं लोगों को इससे गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले कि द फिल्म इज ऑल अबाउट म्यूजिक एंड लोग देखने ही ना है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, ये जगाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म अभिमान, यानी बच्चन साहब की फिल्म एंड ऑफकोर्स जया जी की फिल्म। तो ऋषिकेश दा जब ये फिल्म बना रहे थे ना, इनफैक्ट जब वो क्लैप्स होती है ना, मुहूर्त होता है, उसमें भी लिखा गया था राग रागिनी। बट लेटर ऑन जैसे जैसे फिल्म स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं, अगर हमने इसका नाम राग रागिनी रखा तो लोगों को ये लग सकता है कि सिर्फ म्यूजिक पे फिल्म होगी, और इसकी वजह से फिल्म का असली एसेंस, अभिमान या फिर ईगो प्रॉब्लम ले लो, वो कहीं छूट ना जाए। द प्राउड दैट ही वॉन्टेड टू शो बिटवीन यू नो अमंग्स रिलेशनशिप, एंड दैट्स वाई ही चेंज द नेम, उन्होंने राग रागिनी से हटा के इसे रखा अभिमान। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, इन केस मुझसे कुछ बात करनी है, कोई शिकायत भी करनी है, तो एकदम धड़ल्ले से कर सकते हो। फेसबुक एंड इंस्टा, माई हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

मूवी के प्रीमियर पे ना इंडस्ट्री के सारे दिग्गज आते थे, और जब फिल्म खत्म हो जाती थी तो ना अगर उन्हें अच्छी लगती थी तो वो जाकर के अप्रिशिएट करते थे, नहीं अच्छी लगती थी तो भी बिना कुछ कहे निकल जाते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। इस फिल्म के प्रीमियर पे राजेश खन्ना साहब को कोई पूछ भी नहीं रहा था, ही वॉज द हीरो ऑफ द फिल्म। स्टिल आराधना की बात कर रही हूँ जिसका गाना भी मैंने आपको सुनाया। तो कहते हैं कि काका ना वो जो स्टेज होती है ना, सीढ़ियाँ होती हैं, उस पर कोने में खड़े हुए थे। भाई इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें देखा बट इग्नोर कर दिया, बिकॉज इस फिल्म से पहले काका की सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी। बट आफ्टर दे वॉच द फिल्म एट द प्रीमियर, एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग कहाँ है खन्ना, कहाँ है खन्ना। दैट हैपेंड क्योंकि लोगों को पता चल गया था, ओहो राजेश खन्ना has arrived after Aradhana। पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गाने और बातें तो चलेंगी, लेकिन मैं कौन हूँ ये याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। रोज रात में मिलती हूँ, मेरा नाम है श्रेया, only on मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: दीवाना

रोल चाहे जितना भी खास हो, जितना भी मीठी हो, लेकिन उस जमाने के एक्टर्स दोस्त हुआ करते थे और इस कदर की दोस्ती निभाते थे कि जाकर के पूछते थे, अरे ये रोल तू नहीं कर रहा क्या, क्यों, क्या रीजन है? पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये जो गाना अभी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म तीसरी मंजिल। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे नासिर हुसैन साहब और फिल्म में मेन लीड करने वाले थे देव साहब। अब हुआ ये कि दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ जिसकी वजह से देव साहब लेफ्ट द फिल्म। अब नासिर हुसैन साहब शम्मी कपूर के पास गए इस फिल्म का मेन लीड का रोल लेकर के। ही प्रपोज द रोल टू हिम। शम्मी साहब जो उस समय डायर नीड ऑफ अ गुड रोल थे, एक अच्छी फिल्म टू बी डायरेक्टेड बाय अ गुड डायरेक्टर, कि उनके करियर का ग्राफ उड़े, वो चाहते थे ये रोल, दिल ही दिल में बहुत ज्यादा चाहते थे। लेकिन पता है उन्होंने क्या किया? देव साहब क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने देव साहब को कॉल किया और ये कंडीशन उन्होंने नासिर हुसैन के सामने भी रखी कि अगर देव विल बी ओके विद इट तभी मैं ये रोल करूंगा। सो भाई उन्होंने कॉल किया, देव साहब ने कहा हाँ हाँ कर ले, तेरा ही रोल था वो। तब शम्मी साहब ने इस फिल्म में स्टार किया एंड द मूवी वॉज अ सुपर डुपर हिट, वन ऑफ शम्मी कपूर्स मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स। रफ़ी साहब ने गाना गाया पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। ऐसे बहुत सारे किस्से एक एक करके शेयर करूंगी, कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषि कपूर एंड डिम्पल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म बॉबी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ शैलेंद्र जी ने गाना गाया है। एंड ऋषि कपूर जब ये फिल्म बनने वाली थी उससे पहले एक ट्रेनिंग सेंटर जाया करते थे, काइंड ऑफ ए जिम। ओके, उसमें उनकी जो ट्रेनर थी शी वॉज अ पारसी गर्ल जिसका नाम था यास्मिन, एंड ही फेल इन लव विथ हर। आई मीन वो उनका पहला प्यार थी। अब जब ऋषि कपूर की फिल्म रिलीज हुई एंड ही बिकेम अ ह्यूज स्टार, तो कुछ कारणवश दे बोथ पार्टेड वेज। कहते हैं कि ऋषि कपूर थोड़े एरोगेंट भी हो गए, थोड़ा कम टाइम भी दिया, जिसकी वजह से दे बोथ ब्रोक अप। अब असली बात क्या थी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली पता है दैट यास्मिन वॉज गॉर्जियस, शी वॉज प्रिटी, शी वॉज ब्यूटिफुल, और ये ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट गाना।

Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

रजिया सुल्तान का ये गाना विच इज संग में लता जी ओनली ऑन पुरानी जीन्स, मैं हूँ श्रेया। अच्छा, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी। कुछ लोग इसका कारण कहते हैं कि फिल्म में उर्दू का बहुत ज़्यादा यूज था। कुछ लोग इसका कारण कहते हैं कि कमाल अमरोही जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी उन्होंने फिल्म को बनाने में बहुत साल लगा दिए। ही टुक 5 years टू मेक द फिल्म। जब ये फिल्म फ्लॉप हुई तो वही इंडस्ट्री ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया और ये भी कहा कि इंडस्ट्री को एज एट यू नो एज द एंटायर इंडियन सिनेमा की इंडस्ट्री को डेट में लाने वाले कमाल अमरोही साहब की ये फिल्म थी। बट कमाल अमरोही मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट। उन्होंने कहा कि 5 साल तक फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस था, फिल्म के जो कास्ट एंड क्रू थे, फिल्म का कैमरामैन, लाइटमैन, एवरीबडी, सबको काम मिला अपना घर चलाने के लिए। और मुझे तो ये फिल्म बहुत पसंद है। आई मीन हेमा मालिनी ना आपको एकदम अलग ही अवतार में दिखेंगी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी। वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है। बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है। मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पुरानी जीन्स पे अब श्रेया के साथ चले जाने का टाइम हो गया है, सो लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट सिर्फ गाना नहीं है, जीवन की सच्चाई है, जो बस अगर लाइफ में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो ना, लाइफ इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी सिंपल। और वो क्या है?
1: छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले।
0: एब्सोल्युटली, जीवन के दिन छोटे ही सही, हम भी बड़े दिल वाले। लता जी के आवाज में गाना कमिंग ऑन राइट नेक्स्ट। मैं जाती हूँ, कल मिलने फिर से आती हूँ। इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी, फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव। दैट्स आरजे SHREYA विद लव। बाय।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश

Radio Mitchell, New York. It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot।

मुझसेना हो पाएगा। कौन बोला

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या आप जानते हैं लाइफ में चार अलग तरह के विघ्न होते हैं? क्या है वो हर विघ्न और गणपति इस नाम का असल मतलब क्या है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर श्रेया, अभी बहुत ही जैसे जहां भी आप जाएं माहौल में अभी बहुत मस्ती है, बहुत लोग खुश हैं। हमारे सबसे जो प्रिय जो भगवान हैं, मुझे हमेशा लगता है कि गणेश जी जो गणेश भगवान जो हैं वो सबसे मस्ती वाले भगवान हैं, सबसे कूल गॉड है मेरे को लगता है। उनको किसी भी रूप में आप देखिए, नाचते हुए भी दिखाया जाता है, सोते हुए भी दिखाया जाता है, मस्ती करते हुए दिखाया जाता है। विघ्नहर्ता तो कहते हैं, लेकिन हमेशा उनसे इसलिए जुड़ता हूँ क्योंकि मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। वो एक ऐसे भगवान है जिनके साथ आप हर रूप में शामिल हो जाते हैं। तो ये गणेश उत्सव का बहुत अच्छा समय है, तो मैंने सोचा कि इस बारे में भी थोड़ी बात हो जाए।
4: उत्सव होता है इसलिए कि वो हमारे जीवन में उमंग उत्साह लेकर आता है।
3: जी,
4: बीच बीच में जो उत्सव आते हैं वो एक सेलिब्रेशन, एक उमंग उत्साह लेकर आते हैं, लेकिन हर उत्सव के पीछे कुछ ना कुछ रिमाइंडर्स भी होते हैं।
3: अच्छा,
4: आप देखे जैसे हम गणपति जी को विघ्नहर्ता कहते हैं।
3: हाँ जी।
4: हम बहुत प्यार से इन दिनों में सभी उनको घर में लेकर आते हैं, स्थापित करते हैं, और समझते तो यही है कि इसके बाद हमारे जीवन में जो विघ्न है
3: वो चले जाएंगे,
4: वो चले जाएंगे। पर क्या ऐसा हो सकता है? ये सवाल अपने से पूछ।
3: टेम्पररीली हो सकता है।
4: टेम्पररीली भी कैसे हो सकता है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में विघ्न आते हैं वो क्यों आते हैं?
3: अच्छा, वो हमारे कर्मों से ही आते हैं।
4: और ये हम सब कहीं ना कहीं समझते हैं कि कोई मेरा कर्म है जिसका विघ्न कई रूपों में आता है,
3: माना
4: धन के रूप में। मुख्य चार रूप होते हैं जिसमें विघ्न आपको आएगा।
3: अच्छा।
4: धन है एक।
3: हाँ।
4: कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, ये सबसे हल्का होता है वैसे।
3: अच्छा।
4: हमें लगता बहुत बड़ा है। हाँ। लेकिन ये कंपैरिजन में सबसे हल्का है।
3: अच्छा।
4: सेकंड, रिश्तों का,
3: रिश्तों
4: में कोई कॉम्प्लिकेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, कोई और तकलीफ है, दरार नहीं है, तो भी कोई बच्चा है, सही मार्ग पर नहीं है, आपको रिश्तों में दुख मिल रहा है। तो रिश्तों में आपको सुख मिलना चाहिए, आपको दुख मिल रहा है किसी भी रिश्ते से। थर्ड, हेल्थ।
3: हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
4: जो बिल्कुल शरीर आपके साथ है, आप छोड़ नहीं सकते, किनारा नहीं कर सकते। एक बार रिश्ते से फिर किनारा कर सकते हो, लेकिन हेल्थ से आप अपनी बॉडी से तो किनारा भी नहीं कर सकते। तो कोई शरीर का पेपर है, कोई तकलीफ है। और फोर्थ, मन, मानसिक बीमारी है। मन खुशी नहीं रहता, मन किसी चीज में लगता ही नहीं है, मन बेचैन रहता है, ओवर थिंकिंग होती है। तो ये चार लेवल्स होते हैं जिसमें ज्यादातर जो हमने कर्म किया है उसका फल, अगर सही कर्म नहीं है तो वो कोई विकर्म है, तो वो इस रूप में लौट कर आता है। कोई धन का पेपर, कोई संबंध का पेपर, कोई तन का पेपर, नहीं तो कोई मन का पेपर।
3: क्या बात।
4: अब ये जब विघ्न आता है तो ये विघ्न को खत्म करने के लिए हम सोचते हैं कि हम इन दिनों में हमारी विशेष भावना रहती है कि हम गणपति जी को अपने घर में लेकर आएंगे और उनको हम कहते हैं कि वो सिद्धि विनायक है, वो दुख हरता सुख करता है, वो विघ्न विनाशक है। लेकिन वास्तव में गणपति जी जो पूरा है वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं।
3: अच्छा, कैसे?
4: वो सिर्फ गणपति जी नहीं है, वो गुणों के पति हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: गणपति जी से ईगो का क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुणों के पति हैं इसलिए वो गणपति हैं।
4: इसलिए वो गणपति हैं। पहली चीज तो जो कहानी पे दिखाते हैं भक्ति के अंदर कि गणपति जी खड़े थे, कहते हैं कि पार्वती जी ने उनको अपने शरीर की मिट्टी से बनाया।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: अब वैसे तो कोई शरीर की मिट्टी से बना नहीं सकता, ये सिंबॉलिक है, शरीर की मिट्टी से बनाया मतलब वो बॉडी कॉन्शियसनेस का प्रतीक है
3: जी।
4: और फिर दिखाते हैं कि उसको आदेश दिया था कि वो स्नान पर गई है, बाहर खड़े हैं कि किसी को घर के अंदर नहीं आने देना। और उसे समय पर दिखाते हैं कि शंकर जी कई वर्षों की तपस्या करके आए और इस बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। आप और हम अगर थोड़ी देर के लिए भी मेडिटेशन करते हैं तो भी हम शांति का अनुभव करते हैं। कोई वर्षों की तपस्या करके आया और उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने ही बच्चे का गला काट दिया, ये कैसे हो सकता है?
3: सही बात है।
4: तो बच्चे का गला काटने का जो उस समय मतलब था कि गणपति जी जो उनका बालक था, उनका बेटा था, उसने उनको नहीं पहचाना। माना हम भगवान को ही नहीं पहचानते, इतने अहंकार में होते हैं, इतने ईगो में होते हैं, उसको या उसके श्रीमत को ही नहीं पहचानते। तो भगवान सबसे पहले आकर के हमारे ईगो को खत्म करते हैं।
3: अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
4: वो जो गला काटा, अपने बालक का गला नहीं काटा,
3: ईगो का सर काटा,
4: लेकिन जो ईगो का एरोगेंस का सर काटा, वो देवभान का सर काटा, वही तो स्पिरिचुअलिटी होती है ना। स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले किसको काटती है? आपके अहम को खत्म करती है। और फिर अगर सर काटा भी था तो वो सर भी तो लगा सकते थे।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: लेकिन वो सर ना लगा करके किसका सर लगाया? हाथी का सर लगाया
3: जी,
4: क्योंकि वो हाथी का सर जो है वो विजडम का प्रतीक है।
3: अच्छा,
4: हाथी का जो सर है, हाथी वैसे भी एक बहुत ही इंटेलिजेंट
3: जानवर होता है,
4: जानवर हुआ जाता है। लेकिन अगर आप गणपति के एक एक अंग को भी देखेंगे तो उस हर अंग के अंदर जीवन जीने का तरीका समाया हुआ है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: गणेश भगवान जी की आंखें किस चीज का प्रतीक है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अगर आप देखें गणपति जी की आंखें कैसे दिखाते हैं,
4: छोटे छोटे होते,
3: छोटी छोटी आंखें हाँ। होती हैं। सर इतना बड़ा है
4: हाँ।
3: लेकिन आंखें छोटी छोटी हैं
4: हाँ।
3: छोटी आंखें का जो प्रतीक है दूरंदेशी, फार साइटेड।
4: अच्छा,
3: हम कभी कभी जो कर्म करना होता है
4: हाँ।
3: या जो डिसीजन लेना होता है वो बस आज का देख करके कर लेते हैं
4: हाँ।
3: पर हमारे बड़े बुजुर्ग भगवान शास्त्र हमेशा कहते हैं सिर्फ आज का नहीं देखो,
4: आगे
3: इसका परिणाम क्या होगा
4: वो सोचो। हाँ सही बात है,
3: वो सोच करके कर्म करो। आज तो कल कर लेंगे कहेंगे कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, लेकिन कल जो है वो आज से बनना है।
4: सही बात है,
3: जो भविष्य है वो वर्तमान से बनना है। तो जो भी डिसीजन है वो सिर्फ आज का देख करके नहीं,
4: आगे का सोच,
3: फार साइटेड दूरंदेशी होकर के।
4: क्या बात,
3: बहुत छोटी आंखें हैं।
4: अच्छा,
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बप्पा के बड़े कान और सूंड क्या दर्शाते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: कान कैसे दिखाए हैं?
5: बड़े बड़े हैं।
4: बड़े बड़े दिखाए हैं, तो बड़े कान जैसे छलनी की तरह होते हैं ना।
5: हाँ।
4: आप कोई भी चीज है उसको
5: छान के अंदर जाए। अच्छा,
4: सब कुछ नहीं सुनना है
5: तो जो काम की चीज है वही अंदर जाती है, बाकी सब बाहर रह जाती है। वाह, क्या बात।
4: विशेषताएं सुनो, अच्छी बातें सुनो, जो बात काम की नहीं है उसको छोड़ दो, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। दो कान के बीच में बुद्धि है,
5: वहाँ रह जाता है।
4: आपने कुछ सुना, बुद्धि उसका चिंतन करती है, वो बात रह जाती है। और कई बार तो बहुत बहुत सालों तक रह जाती है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए सुनना जो है वो ध्यान से सुनना है। चलनी जो काम की चीज है वो सुनना है, जो काम की चीज है वो
5: बाहर
4: सुनना है। फिर सूंड दिखाते हैं। अब हाथी के जो सूंड है आप देखें, वो उसी सूंड से पेड़ भी उखाड़ सकता है।
5: हाँ, बिल्कुल।
4: और बहुत प्यार से उसको आप केला दे वो भी स्वीकार कर लेगा।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: गणपति जी का बड़ा पेट, चार हाथ और ऊपर और नीचे पैर क्या सिग्निफाई करते हैं, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो बड़ा पेट की निशानी है समा लेना।
4: अरे वाह, क्या बात।
3: आपने किसी की कमी देखी, आपने किसी से कोई बात सुनी, कोई निंदा है, उसको समा लेना, वर्णन नहीं करना।
4: बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया।
3: फैलाना नहीं उसको, क्योंकि आप जितना उसको फैलाते हैं वो एनवायरनमेंट को नेगेटिव करती है, उस व्यक्ति को कमजोर करती है। तो बड़ा पेट समाने के शक्ति।
4: क्या बात।
3: फिर आप अलंकार देखेंगे।
4: अच्छा।
3: अगर गणेश जी के जो चार हाथ दिखाते हैं ज्यादातर, उसमें एक हाथ हमेशा ऐसा होगा, ब्लेस करता हुआ,
4: आशीर्वाद देता हुआ। बिल्कुल सही।
3: मना ये एक निशानी है कि जो गुणों से संपन्न आत्मा है वो हमेशा सबको देती है। प्यार दिया, खुशी दिया, सम्मान दिया, देने वाला, दाता, ब्लेसिंग का हाथ है, देना है। एक हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है। कुल्हाड़ी किस चीज की निशानी है? कुल्हाड़ी से आप क्या करेंगे, मारेंगे ना। अपनी ही कमी कमजोरियों को मारना।
4: अच्छा।
3: फिर रस्सी दिखाई है। रस्सी मन, रस्सी से बांधते हैं अपने जीवन को, डिसिप्लिन में बांधना,
4: बांध के रखना। अच्छा।
3: और फिर मोदक दिखाते हैं। मोदक माना क्या, फाइनली आपने उस चीज को जो भी जीवन में थी, सफलता है, यश है, नाम है, मान है, उसको पा लिया। लेकिन वो मोदक हमेशा पकड़े हुए दिखाते, खाते हुए नहीं दिखाते। आपने पा लिया लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया।
4: अच्छा।
3: सब कुछ पाने के बाद भी लेकिन उस चीज का कोई अहंकार नहीं है। इसीलिए गणपति जी को कई बार दिखाएंगे एक पैर ऊपर है।
4: हाँ, हमेशा एक पैर ऊपर होता है, एक पैर नीचे होता है।
3: एक पैर नीचे होता है। उपराम स्थिति।
4: उपराम स्थिति, इसका मतलब क्या? बियॉन्ड।
3: माना जैसे कमल का फूल होता है।
4: हाँ।
3: वो खिलता कीचड़ में, लेकिन कीचड़ का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता।
4: बिल्कुल।
3: हम इसी सृष्टि में रहते हैं, नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन डिटैच्ड हैं। किसी भी चीज का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं पड़ता। तो जो आपने कहा था ना कि बहुत ही डांस करते हुए हैं, बहुत ही हंसते हुए हैं, बहुत ही निश्चिंत है, ये स्थिति तब बनती है।
4: वाह, क्या बात।
3: जब आप गुणों से संपन्न होते हैं तो वो देवी देवता वाली स्थिति जो दिखाई देती है वो बनती है। तो इसीलिए ये जो त्योहार आते हैं इनके अंदर बहुत सिग्निफिकेंस होता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: गणपति जी के वाहन चूहे या मूषक, उनका क्या महत्व है, आइए जाने।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सवारी किस पर दिखाते हैं?
4: सवारी तो इस पे
3: गणपति की सवारी जो है चूहे पर दिखाते हैं,
4: बट मूषक तो आई थॉट वो सवारी नहीं होती। अच्छा, हाँ,
3: दिखाते
4: मूषक होते हैं,
3: दिखाते हैं। अभी इतने बड़े गणपति जी
4: इतने छोटे चूहे पे कैसे,
3: चूहे के ऊपर कैसे आ सकते हैं? अब चूहे के ऊपर बैठे हैं, माना किसी चीज के ऊपर हमने जीत प्राप्त कर दिया। चूहा क्या करता है आप अगर देखेंगे, जहाँ जाएगा
4: हाँ वो छेद कर देता है, खा लेगा, हाँ
3: कुतरता रहेगा, कुछ भी उसको मिलेगा वो कुतरता रहेगा। ऐसे ही हमारी जो कर्मेंद्रियां है ना, ये सारा दिन क्या करते हैं, ये देखा ये खा लिया, ये देखा वो देख लिया, सुनना नहीं था सुन लिया, माना कंट्रोल में नहीं चलती है। और इसीलिए चूहा आप देखें, कभी भी चूहा काटता है तो वो पहले फूंकता है।
4: अच्छा,
3: जहाँ वो फूकता है वो ऐसा इफेक्ट हो जाता है, वो चीज सुन हो जाती है। जैसे किसी को एनेस्थेशिया दो तो वो जगह कैसे सुन हो जाती है। चूहा पहले फूकता है, सुन करता है, काट के चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे ही हमारी ये कर्मेंद्रियां कब धोखा दे देती हैं पता नहीं चलता। खाना नहीं था खा लिया, देखना नहीं था देख लिया, सुनना नहीं था सुन लिया, बोलना नहीं था
4: बोल दिया,
3: फिर गिल्ट हुआ। लेकिन हम उसके मालिक तो नहीं है ना, हम उसके गुलाम है। तो चूहे पर सवारी मना स्वराज्य अधिकारी, कोई भी कर्मेंद्रिया मुझे धोखा नहीं दे सकती, इसलिए उनको सिद्धि विनायक कहते हैं।
4: अच्छा,
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमें जीवन में सिद्धि कब मिलती है, आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जब आप इतनी मर्यादाओं से चलते हो, आप में समाने की शक्ति है, दौरान देशी है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, लव एंड लॉ का बैलेंस है, जब ये सब गुणों के आप पति है तो आप जीवन में कुछ भी कर लो आपको सिद्धि मिलनी है। सिद्धि माना सफलता। आप संकल्प जो करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। आप बोल जो बोलेंगे लोग कहेंगे इनके तो बोल वरदानी है, ये बोलते हैं और काम हो जाता है। इनके बोलने से काम क्यों हो जाता है, क्योंकि कुछ वेस्ट है ही नहीं, शक्तिशाली आत्मा है, तो सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए कहा सिद्धि विनायक, गुणों से सिद्धि आती है। केवल गणपति जी को हम ले आए और विराजित करें, हम सोचे अब सिद्धि आ जाएगी और हम अपने को परिवर्तन न करें,
4: तब नहीं होगा,
3: नहीं हो सकता।
4: बहुत बढ़िया।
3: और लास्ट चीज, जस्ट टू एंड इट, गणपति जी को और उनके भाई कार्तिकेयन को कहा था चक्कर लगा कर आओ सारे विश्व। कार्तिकेयन तो चल पड़ा चक्कर लगाने, गणपति जी ने क्या किया,
4: अपने शिव जी और पार्वती जी के अराउंड ही चक्कर मारा,
3: अपने माता पिता के चारों ओर ही चक्कर लगाना। माना किसके प्रति आज्ञाकारी रहना,
4: अपने पेरेंट्स के प्रति,
3: तो वो परमात्मा। माना माता पिता कौन है, यहाँ पे शंकर परमात्मा। जब हम परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं, उसकी आज्ञा पर चलते हैं, तो हमें सारा विश्व भागने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ही सारा विश्व हमारे पास आ जाता है।
4: सही बात।
3: सारी सफलता, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज वो अपने आप आ जाएंगे। तो जब उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप्स है, चाहे वो आपका मन है, एवरीथिंग विल प्रॉस्पर। इसीलिए सिर्फ गणपति जी को नहीं लेकर के आना, लेकिन गुणों के पति बनना।
4: ब्यूटीफुल, वाह, बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिली।
2: अच्छा, डॉक्टर राजकुमार सिंह पुणे से फिर लिखे हैं। जब किसी की लाइफ में कुछ एडवर्स या विपरीत होता है तो वो अपने पिछले जन्मों का कर्म क्यों ब्लेम करता है, अपने प्रेजेंट कर्मों को क्यों नहीं देखता जो ज्यादा रियल है?
3: सी, इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप उसको एक्सेप्ट करें और ब्लेम नहीं करें। जो भी अगर कोई आपके साथ में एडवर्स सिचुएशन है, नॉर्मली क्या होता है, जब एडवर्स सिचुएशन होती है तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते।
2: सही बात है।
3: हम ब्लेम करना चाहते हैं या व्यक्ति को या समय को या मेरे कुंडली को या भगवान
2: को
3: किसी
2: को।
3: इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी एडवर्स सिचुएशन है तो एक एक्सेप्टेंस चाहिए कि अच्छा, ये कोई मतलब पास्ट का है जो रिटर्न में आया है। गिल्ट में भी जाने की जरूरत नहीं।
2: सही बात है।
3: इट इज जस्ट एक्सेप्टेंस, अब क्या करना है। बहुत लोग समाधान तक पहुंचते ही नहीं है ना। वो इसी के अंदर फंस जाते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, और बहुत दर्द में चले जाते हैं। दर्द में आप जाएंगे, आपसे और गलत होगा और गलत

0: होगा और एडवर्स होगा।
1: सही बात है।
0: जैसे हमने अभी पहले भी देखा था कि एक मदर को शरीर की बीमारी है, फिर वो दर्द में जा रही है, चिंता कर रही है, तो बच्चे के साथ रिश्ता खराब हो रहा है, घर का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो ये एडवर्स एडवर्स एडवर्स क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आप उस चीज को एक्सेप्ट करके, अपना ध्यान रख करके समाधान की ओर नहीं जा रहे। अगर आप समस्या का चिंता करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो समस्याएं बढ़ेंगी।
1: हाँ, समस्याएं बढ़ेंगी और समाधान नहीं मिलेगा।
0: समाधान नहीं मिलेगा, संकल्प से सिद्धि होगी और समस्याएं बढ़ने लगेंगी।
1: सही बात है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो बढ़ता ही है।
0: इसलिए कुछ भी एडवर्स है उसको एक्सेप्ट करें और पूछे, अच्छा अब क्या करना है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स इज ऑफिशियली ऑन। और आज का मूड है थोड़ा सा फेस्टिव, थोड़ा सा फिल्मी, लेकिन फुल ऑन मोदक पावर्ड, बिकॉज यस, इंडिया में आज गणेश चतुर्थी है। बप्पा का ग्रैंड वेलकम हुआ अराउंड द ग्लोब और देसी फैमिलीज का फेवरेट एनुअल रिचुअल भी शुरू हो गया। घर में बप्पा आए हैं, डेकोरेशन है, आरती है एंड ऑब्वियसली मोदक की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट है आज के दिन। और अगर तुम दुनिया के किसी भी कोने से मुझे सुन रहे हो, किसी भी साइड से मुझे सुन रहे हो, ट्रस्ट मी, डिस्टेंस से देसीपन खत्म नहीं होता है। तुम्हारे घर में बप्पा आए हो या व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप में 47 मैसेजेस ऑफ गणपति बप्पा मोरे आए हो, सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन है। सो लेट्स स्टार्ट दिस मॉर्निंग विद अ लॉट ऑफ बप्पा एनर्जी, लेस ऑब्स्टिकल मोर अपॉर्चुनिटीज, और मंडे के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेशेंस। I'm right here with Bollywood का म्यूजिक, ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी मिर्ची, बहुत सारी यहाँ वहाँ की बातें और अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स टू मेक योर मॉर्निंग्स अ लिटिल मोर मिर्ची दैर। एंड हे, कम से हाय टू मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिंस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, यानी कि 9033647244। गणपति बप्पा मोरिया एंड मिर्ची मॉर्निंग्स फुल ऑन जोर शोर से शुरू हुआ है। लेट्स हियर some mirchi dar bangers, stay tuned and stay hot.

0: SFG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये एमर्जी मॉर्निंग। चलो यार, अब टाइम मशीन में चलकर देखते हैं आज का दिन क्यों खास था। 1814 में फ्रांसिस स्कॉट की ने डिफेंस ऑफ फोर्ट्स हेनरी नाम की पोएम लिखी थी, जो बाद में यूएस नेशनल एंथम द स्टार स्पैंगल्ड बैनर के लिरिक्स बने। फिर 1901 में थियोडोर रूजवेल्ट सिर्फ 42 साल की उम्र में यूएस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने। 1949 में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी को यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया, इसीलिए आज हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो हिंदी लवर्स, आज ग्रामर पुलिस को थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, ओके? 1959 में सोवियत यूनियन का लूना 2 मून तक पहुंचने वाला पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बना। और साल 2000 आया, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज मी रिलीज किया। टेक्नोलॉजी ने कहा यार मैं भी हिस्ट्री बनाऊंगा। मैं वैसे प्रिसिला हूँ तुम्हारे साथ और हिस्ट्री नहीं, अभी फ्यूचर की बात करते हैं। आने वाले कुछ मिर्चीदार बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और तुम जाने वाले हो इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे फॉलो करने के लिए। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिज, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप से सीधा मैसेज भी कर सकते हो तुम मुझे। 9033 मिर्ची इज माई नंबर, यानी कि 9033647244। एंड फॉर ऑल दोस सेलिब्रेटिंग, हैप्पी गणपति बप्पा का आगमन। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला इट्स हॉट।
3: Hey there, my mirchi people. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। Let's check your मिर्ची का वेदर आज। अभी फिलहाल 68 degrees Fahrenheit हो रहा है। स्काई थोड़ा सा क्लाउडी है लेकिन फील हो रहा है 69 degrees Fahrenheit के आसपास। So technically वेदर कह रहा है मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे तक पार्टली क्लाउडी रहने वाला है लेकिन 9 बजे के बाद थोड़ी सनशाइन देखने को मिलेगी एंड टेम्परेचर का ओवरऑल रेंज आज रहेगा 60 से लेकर 75 degrees Fahrenheit के बीच में। और गुड न्यूज भी है मेरे पास, कल 14 millimeters की बरसात हुई लेकिन अगले 24 आवर्स में प्रेसिपिटेशन है जीरो। सो अम्ब्रेला को छुट्टी दी जा सकती है। एक इंटरेस्टिंग बिट ये है कि आज का हाई टेम्परेचर कल से थोड़ा सा लो है। कल गया था 82 डिग्री फारेनहाइट तक टेम्परेचर एंड आज जाने वाला है 75 डिग्री फारेनहाइट तक। तो स्वेटर अभी निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ एसी को थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देने की जरूरत पड़ेगी आज। और वैसे आज गणेश चतुर्थी भी है, बप्पा का वेलकम किया गया है। तो चाहे तो मुझे किसी भी कोने से सुन रहे हो और दिल इंडिया में बसा हुआ है, बप्पा से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीगन कम देना, सनशाइन ज्यादा देना और मंडे को थोड़ा सा मैनेजेबल बना के रखना आज के दिन। और मुझे अभी वेदर की पिक्चर्स भेज सकते हो, जहां पर भी हो तुम वहां से मुझे टैग कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। और व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, बड़ा ही इजी बिजी है 9033647244। अभी सुनते रहो मुझे यानी कि प्रिसिला को मिर्ची मॉर्निंग्स पर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Time for Mirchi Hour ke 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Hour ke 3.
1: सबसे पहले रिपोर्ट बाय द टेलीग्राफ सेज लीडर्स फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड स्कॉटलैंड एंड वेल्स आर एक्सपेक्टेड टू मीट टुडे टू साइन अ जॉइंट डिक्लेरेशन कॉलिंग फॉर द राइट्स टू होल्ड रेफरेंडम्स ऑन लीविंग द यूके। नंबर टू पर जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने यूएस ओपन जीत लिया है अमेरिकन बेन शेल्टन को फाइनल में डिफीट करके। दिस इज ज़ेवरेव का सेकेंड ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ 2026 आफ्टर विनिंग द फ्रेंच ओपन अर्लियर दिस ईयर एंड द विनर्स चेक इज फॉर $5.5 million. And lastly, Asia Cup trophy presentation takes an unexpected turn. India's women's team won the 2026 Women's Asia Cup but didn't expect the trophy from ACC chief Mohsin Naqvi, who is Pakistan's interior minister. BCCI secretary Devajit Saikia said India had offered alternative presentation arrangements which were not accepted. India's coach Amol Majumdar said the team stands by the BCCI's decision, adding simply, "We are champions." And there you have it, Mirchi Hour ke 3 for this hour with me Priscilla. Connect with me Insta or X pe, mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: Energy. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Energy burka.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ, वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई?
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डल रहा है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर
1: एक्चुअली आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है?
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया।
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू कु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ Priscilla, तुम्हारे साथ में. It's time for birthday celebration on Mirchi Mornings. सबसे पहले happy birthday to everyone celebrating. और आज का दिन वैसे भी super special है because it's गणेश चतुर्थी यार. और बप्पा से एक special birthday wish है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी life में obstacles यानी विघ्न कम हो, happiness यानी खुशियाँ बहुत ज्यादा हो और केक बहुत ज्यादा कम कैलोरी वाला हो. और मुझसे शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो. इंस्टाग्राम हैंडल बाद में बताऊंगी जहाँ तुम मुझे बर्थडे पिक्चर्स में टैग कर सकते हो. लेकिन अभी तुम्हारे बर्थडे ट्विंस की लिस्ट लेकर आई हूँ. हॉलीवुड से एंड्रू लिंकन एके रिक ग्राइम्स फ्रॉम द वॉकिंग डेड टर्न्स अनदर ईयर वाइजर दिस ईयर. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट शोज. देन वी हैव वन एंड द ओनली वन एमी वाइनहाउस. हिप हॉप रॉयल्टी नास भी आज ही अपना बर्थडे शेयर करते हैं तुम्हारे साथ. एंड बिहाइंड द कैमरा ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर बोंग जून हो द मैन बिहाइंड पैरासाइट. एंड ऑल्सो आज बर्थ एनिवर्सरी है सैम नील की. और हमारे बॉलीवुड से आयुष्मान खुराना द एक्टर सिंगर एंड वो बंदा जो अपने करियर चॉइस में हम सबको प्लॉट ट्विस्ट दे चुका है उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे. प्लस के ड्रामा फैंस ली जोंग सूक इज आल्सो अ बर्थडे बॉय टुडे. हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन अलॉन्ग विद गणपति बप्पा मोरिया. खूब सारे मोदक खाओ, मुझे भी भिजवा सकते हो एटलीस्ट पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. यहाँ पर तुम अपने बर्थडे शाउट आउट्स भेज सकते हो मुझे. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी। जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तो का ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करें। कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू के हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब टाइम है गोल्ड रेट अपडेट का ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: RajJewels.com wishes happy गणेश चतुर्थी टू everyone। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,280, $4,280 पर ट्रायंस के साथ इस गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं RajJewels.com पे, जहां पे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आप आज गोल्ड के थोड़े से रिड्यूस प्राइजेस का बेनिफिट ले सकते हैं और RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुना तुमने एक्सक्लूसिव गोल्ड रेट अपडेट मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। बने रहो इंस्टा और एक्स पर भी। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. And it's time for updates from around the world on Mirchi Mornings. सबसे पहले रिपब्लिकन कैंडिडेट बो फ्रेंच इज फेसिंग बैकलैश इवन फ्रॉम पीपल इन हिज ओन पार्टी आफ्टर मेकिंग रेसिस्ट कमेंट्स अबाउट साउथ एशियन स्टूडेंट्स सेलिब्रेटिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास फुटबॉल गेम. नंबर टू पर रशिया हैज प्रपोज्ड जॉइंटली बिल्डिंग इट्स इनवोल्गा हाई स्पीड ट्रेन्स इन इंडिया. द कॉन्सेप्ट हैज अ डिजाइन स्पीड ऑफ अप टू 360 किलोमीटर्स पर आवर. एंड लास्टली फ्रॉम क्रिकेट अभिषेक शर्मा ने T20 में स्पीड का डेफिनेशन ही अपडेट कर दिया है. इंडिया ओपनर smashed 82 off just 32 balls against Afghanistan and became the second fastest player to reach 6,000 T20 runs in terms of balls faced, doing it in just 3,420 balls. And that's your Mirchi Hour ke 3 for this hour. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Connected raho mujhse Insta or X par. Mera handle hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp bhi kar sakte ho. 9033 Mirchi is my number. That's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बकवा दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गायब? नहीं,
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटा।
4: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: Ochanna Tikuri. Ochanna Tikuri.
1: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
2: आज बाबा का दिन है और यूनिवर्स का सिंपल सा मैसेज आया तुम्हारे लिए कि आज तुम्हारे सितारे क्या कह रहे हैं। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स।
3: मिर्ची राशि जोन
2: इट इज यानी कि मेष राशि। आज स्पीड थोड़ी सी कम, स्ट्रेटजी थोड़ी सी ज्यादा, बिग डिसीजंस को रश मत करो, स्पेशली शॉपिंग में कार्ट में डालने और बाय दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखो। लकी कलर इज कोरल। लकी नंबर इज 6। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज पेशेंस इज योर सुपर पावर। पैसा खर्च करने से पहले एक बार सोच लेना मुझे रियली चाहिए या बस सेल ने इमोशनल कर दिया है। लकी कलर इज सेज ग्रीन। लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, गुड न्यूज, लव और फाइनेंसेस दोनों में लकी स्ट्रीक पॉसिबल है और फैमिली वाइब्स भी आज बेटर रहेंगी, मतलब कि आज फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में म्यूट करने की जरूरत ना पड़ेगी। लकी कलर इज सनशाइन येलो। लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, आज इमोशनल वार्म्थ और फैमिली बॉन्डिंग दोनों स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। लव लाइफ भी स्माइल करेगी तुम पर, बस हर छोटी छोटी बात पर नेटफ्लिक्स लेवल का ड्रामा मत बनाना। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट। लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, हार्ड वर्क तो करें लेकिन कम्युनिकेशन काम रखें। ऑफिस में किसी ने अपना बटन प्रेस किया हो तो बप्पा को याद करना और रिप्लाई करना। लकी कलर इज रॉयल ब्लू। लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, आज डेली स्ट्रेस को ऑर्गेनाइज करने का दिन है। एवरीथिंग डजंट हैव टू बी परफेक्ट, लेकिन हाँ, इंक्लूड दैट वन ईमेल यू've रीरिटन 17 टाइम्स। लकी कलर इज लैवेंडर। लकी नंबर इज 8। और गणेश चतुर्थी पर बप्पा से बस इतना ही कि क्लियर माइंड रखो, काम हार्ट रखो और अननेसेसरी ड्रामा का विसर्जन कर दो। मैं लेकर आती हूँ बाकी बची 6 राशियां इन जस्ट अ व्हाइल। तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स और मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: बप्पा आए हैं तो साथ में लेकर आए तुम्हारे लिए रिमाइंडर कि लाइफ में प्रॉब्लम्स का सलूशन सितारों से मिलता है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी तुला राशि, मनी मैटर्स में डिसिप्लिन रखो। छोटे इमोशनल या करियर हिकअप्स आ सकते हैं, बट डोंट स्पाइरल। एक बैड मॉर्निंग का मतलब बैड लाइफ नहीं होता बेबी। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 7। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, करियर या इमोशंस में माइनर टर्बुलेंस पॉसिबल है। रिएक्शन से पहले थोड़ा सा पॉज करो, फिर थोड़ा सा इधर उधर देखो, टाइपिंग करो, फिर डिलीट कर दो, ठीक है। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 5। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एक्स्ट्रा एनर्जी को गोल्स में लगाओ यार, लेकिन डाइट और रूटीन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। एम्बिशन अच्छा होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप करना इज नॉट अ बिलियन लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप करना इज नॉट अ बिलियनर टाइप का क्वालिटी। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 9। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज कंसिस्टेंसी विंस। काम पर फोकस रखो, रूटीन को स्टेडी रखो और बॉडी को भी यार थोड़ा सा टेंशन दो। बॉस को इम्प्रेस करने के चक्कर में लंच को कैलेंडर इन्वाइट मत समझ लेना। लकी कलर इज रस्ट ऑरेंज, लकी नंबर इज 4। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट आज सरप्राइजिंगली यूजफुल हो सकता है। सब कुछ अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं होती है बेटा, और हेल्थ को प्रायोरिटी देना जरूरी है। यू नोट योर फोन की चार्जर लगाए और चार्ज हो जाओगे। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 11। पाइसेस यानी कि मीन राशि, आज इमोशनल सपोर्ट और सेल्फ केयर दोनों इंपॉर्टेंट है। अपने पीपल को क्लोज रखो, हग करके रखो, हेल्थ के बारे में अपनी बॉडी की सुनो और ओवर थिंकिंग को वेकेशन पर भेज दो। लकी कलर इज सी ग्रीन, लकी नंबर इज 12। गणपति बप्पा के दिन का इंटेंशन काफी सिंपल है, जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो नहीं है उसका स्ट्रेस बप्पा को आउटसोर्स कर दो। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल तोहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखो, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड बिफोर आई से सी यू टुमारो, एक स्टोरी जो लिटरली मेड मी गो एक्सक्यूज मी व्हाट, सुनाना बनता है तुम्हें। चाइना के एक सेकेंडरी स्कूल की एक अलेजेड पॉलिसी पर बैकलैश हो रहा है इंटरनेट पर, जहां पर स्टूडेंट्स को पूरे अकेडमिक ईयर में सिर्फ एक इमरजेंसी टॉयलेट ब्रेक अलाउ किया जा रहा है। यस, यू हर्ड इट राइट, पूरे साल भर में एक इमरजेंसी टॉयलेट ब्रेक। और अगर किसी स्टूडेंट ने सेकेंड टाइम वॉशरूम यूज किया, अपेरेंटली पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जा सकता है। गाइज, ब्लैडर को टाइम टेबल थोड़ी मिलता है यार, क्या हो रहा है ये। द पॉलिसी रिपोर्टेडली केम टू लाइट आफ्टर अ टीचर शेयर्ड अ फोटो ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आउटलाइनिंग क्लासरूम मैनेजमेंट रूल्स। ये स्टोरी जो है इसने स्पार्क किया है काफी सारा क्रिटिसिज्म, स्पेशली अराउंड स्टूडेंट्स वेलबींग। सो आज गणेश चतुर्थी पर बप्पा को याद करके एक सिंपल सी विषय यार, कि सबको ऑब्स्टिकल से दूर रखो और होपफुली बेसिक कॉमन सेंस की सप्लाई चाइना वालों को तो देनी ही चाहिए, क्योंकि वो बप्पा की मूर्तियां बहुत ज्यादा बनाते हैं चाइना में टू सेल अक्रॉस द वर्ल्ड। थोड़ी सी कॉमन सेंस भी बप्पा उनको दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे ऑन दैट फनी नोट, मैं जाती हूँ यहाँ से, टाटा बाय बाय फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी दिस मॉर्निंग थ्रू द म्यूजिक एंड थ्रू द मैडनेस एंड न्यूज एंड ऑफ कोर्स मिर्ची। एंड होपफुली आज का दिन तुम्हारा थोड़ा सा बेटर हुआ होगा मेरी वजह से। मैं हूँ प्रिसिला एंड दिस इज वेयर आई से मिर्ची मॉर्निंग्स आउट। लेकिन तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो जाकर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। कल फिर से मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, काफी सारा देसी स्वैग बबराएंगे। अभी के लिए मिर्ची तक गाने तुम्हारे लिए, व्हाट्सएप का नंबर मेरा है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रूना लैला की आवाज है, गुलजार साहब के लिरिक्स हैं पुरानी जीन्स पे, आप हो श्रेया के साथ। हेलो हेलो वेलकम, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, ये जो गाना अभी आपने सुना ना, ये गाना है फ्रॉम द फिल्म घरौंदा। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1977 और ये साल एक सुपर डुपर हिट साल था। अगर हम फिल्म्स की बात करें, ये वो साल था जब मल्टी स्टारर फिल्म्स रिलीज हो रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बिग बैनर्स की रिलीज हो रही थी। फिर चाहे अमर अकबर एंथनी हो, परवरिश हो, हम किसी से कम नहीं हो। और ऐसे में अ वेरी लो बजट फिल्म विद अमोल पालेकर एंड यू नो जरीना वहाब, ये फिल्म ने भी अपनी जगह बना ली। इसी फिल्म का गाना आपके लिए लेकर के आई थी मैं। अब अगला कौन सा गाना है ये मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी। सुन करके वापस आओ, कहानी और किस्से उस जमाने के अभी तो शुरू हैं। आगे आगे सुनो, होता है क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल लगा?
4: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
3: मेरी
4: बात है। अच्छा चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
3: मैंने सोचा यार, रिक्शा
4: मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
2: पटाक।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जहरीला इंसान मूवी से ये गाना विच इज पिक्चराइज्ड ऑन ऋषि कपूर, इट इज संग बाय किशोर दा। सुनाने वाली कौन है आपको पुरानी जींस पे? करेक्ट, आपकी प्यारी श्रेया। अच्छा सुनो ना, ये गाने के लिए ऋषि कपूर अड़ गए थे आरडी बर्मन के साथ, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। वो चाहते थे कि ये गाना उनके लिए शैलेंद्र जी प्लेबैक करें। ऋषि कपूर को लग रहा था कि शायद किशोरदा की आवाज ना उनके लिप सिंक के साथ जाएगी नहीं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की भाई पंचम दास से कि प्लीज इसमें शैलेंद्र जी को ले लीजिए। लेकिन भाई आरडी बर्मन तो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। सो किशोरदा को लाया गया और क्या खूबसूरत रेंडिशन है ऑफ दिस प्रिटी प्रिटी ट्रैक, ओ हंसिनी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। और कौन कौन से गाने हैं? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे सुनते जाओ, होगा क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, वो उस फिल्म का है जिसने रातों रात डेब्यू एक्टर्स को स्टार बना दिया था। एक थे कुमार गौरव और दूसरी थी विजेता पंडित। वेल, अगर आप रेट्रो फैन हैं तो आपको समझ में ही आ गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म लव स्टोरी। लेकिन इस फिल्म ने एक्चुअली में दो दोस्तों के बीच में हमेशा के लिए दरार डाल दी, मनोज कुमार और राजेंद्र कुमार। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो राजेंद्र कुमार चाहते थे कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर जब ये फिल्म लव स्टोरी बना रहे हैं और अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे में ही वांटेड कि मनोज कुमार शुड डायरेक्ट द फिल्म। मनोज कुमार ने मना कर दिया। मनोज कुमार ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर चुके थे और उसके तहत अपनी फिल्म क्रांति, पहली फिल्म क्रांति बना रहे थे। सो ही पोलाइटली रिफ्यूज। लेकिन ये बात राजेंद्र कुमार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजेंद्र कुमार थॉट कि उन्होंने मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म लाई थी, दैट वाज हरियाली, तो शायद दोस्त जो है वो इस बार फेवर रिटर्न करेगा, बट दैट डिड नॉट हैपन। एनीवे, इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत है। कमिंग अप, आशुताई का ये गाना फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डिम्पल कपाड़िया इस फिल्म के लिए अपना साइनिंग अमाउंट बिल्कुल वापस नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर टीनू आनंद ने उनको ट्रिक किया, उनके साथ थोड़ी सी चालाकी की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक फिल्म शहंशाह। तो इसमें बच्चन साहब हैं और इसमें मीनाक्षी शेषाद्री हैं। सो मीनाक्षी शेषाद्री वाले रोल के लिए टीनू आनंद ने साइन किया था डिम्पल कपाड़िया को, उनको ना उनके साइनिंग अमाउंट भी दे दिया था। लेकिन फिर टीनू आनंद को लगा कि बच्चन साहब पॉलिटिक्स को बाय बाय कह करके बॉलीवुड की फिल्में करने बहुत टाइम के बाद आ रहे थे, तो ऐसे में लोग कोई नया चेहरा देखना चाहेंगे अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट, तो उन्होंने फिर मीनाक्षी शेषाद्री को साइन कर लिया। आप भाई इस बात से काफ़ी ऑफेंड हुई डिम्पल, उन्होंने कहा कि मैं साइनिंग अमाउंट वापस नहीं करूंगी, क्योंकि टीनू आनंद बार बार उनसे उनका साइनिंग अमाउंट वापस मांग रहे थे। शी सेड कि आई एम नॉट द वन हु इज वॉकिंग आउट ऑफ द फिल्म, आपने अपना डिसीजन चेंज किया है तो मैं क्यों पैसे वापस करूं। और ये कंट्रोवर्सी उस टाइम के न्यूज़पेपर्स ने जम करके छापी थी, फिल्म मैगजीन्स ने जम करके छापी थी। फिर टीनू आनंद ने उनसे कहा कि अगर वो साइनिंग अमाउंट वापस दे देंगी तो वो दो बैक टू बैक फिल्में उनके साथ अनाउंस करेंगे अलोंग विद अमिताभ बच्चन। वेल, डिम्पल कपाड़िया के लिए बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर था, बिकॉज शी ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद अमिताभ बच्चन। क्या उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, येस और नो, बताऊंगी कुछ गानों के उस पर। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

है कि ये फिल्म देवानंद साहब ने जीना तवान के लिए बनाई थी। ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड ये जो फिल्म थी ना हीरा पन्ना, इसमें देव साहब और जीना तवान थे। अब क्यों ये फिल्म उन्होंने उनके लिए बनाई थी, ऐसा वाई पीपल से इज बिकॉज ये जो फिल्म थी उससे पहले आई थी हरे राम हरे कृष्णा, और उस फिल्म में देव साहब ने जीना तमन को लॉन्च किया था। जीना तमन उस फिल्म में देव साहब की सिस्टर बनी थी। ये फिल्म हिट होने के बाद ना इतने सारे ऑफर्स आ रहे थे जीना तमन के, लेकिन सब बहन वाले। अब भाई जीना तमन तो ऑफकोर्स हीरोइन बनने आई थी, तो देव साहब ने उनको इन सारे ऑफर्स को ठुकराने के लिए मना किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें तुम हीरोइन होगी, लीड हीरोइन की तरह काम करोगी। एंड देन दिस फिल्म केम हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ऐसे किस्से कहानियां यहाँ चलती रहेंगी, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मुकेश जी।
4: कौन?
3: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली थोड़ा।
4: नहीं हो पाया भाई?
3: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
4: हाँ जी? नहीं पाया
3: सर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
4: हाँ
3: सर वो भी हो नहीं पाई है वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
4: नहीं क्या हो नहीं पाया तुम्हारे यार रोज के तुम्हारे जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है क्या मजाक ही क्या है ये?
3: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
4: क्या समझ रहे हो भाई।
3: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
4: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
3: सर वो
4: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया मुझे फोन करना है मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
3: नहीं सर
4: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दें।
3: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
4: क्यों नहीं हो पाया?
3: सर वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
4: है?
3: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
4: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
3: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ मतलब हम
4: क्या करा दूँ
3: सर मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
4: कैसी FIR दिमाग खराब हो गया तेरा पागल तो नहीं है तू?
3: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
4: गुस्सा ना करूँ नई गाड़ी थी हमारी।
3: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है हमने भी तो ग्रीस लगाया
4: उसमें
3: ग्रीस लगाया उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
4: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में तुम्हारे वर्कशॉप में।
3: अच्छा सर
4: मुझे चाहिए अपनी वापस।
3: सर आप इतना गुस्सा ना करें
4: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
3: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
5: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
4: तो जान निकाल दी हमारी।
5: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए गुस्सा खत्म करिए।
4: कुकड़ू कू
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार।

नीतू जी अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम कर रही थी इस फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, ये जो गाना है फ्रॉम द फिल्म याराना, जिसमें नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट पहली बार काम कर रही थी, तो शी वॉज इतना इन ओ ऑफ हिम कि उनके मुंह से ना डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। तो जब सेट पे उनको पहली बार जब डायलॉग बोलना था ना, वो था देखो किशन कोई आ गया। नीतू जी इतनी ज़्यादा अमिताभ बच्चन से इम्प्रेस थी कि उन्होंने कपकपाते शब्दों में कहा, देखो देखो अमित कोई आ गया। अब भाई नाम उनका किशन था, यानी बच्चन साहब का कैरेक्टर नेम, लेकिन अमित कहा उन्होंने। और काफी टाइम के बाद किशन किशन किशन किशन प्रैक्टिस करने के बाद ना, तब जा करके वो अमित को साइड रख पाई थी। पुरानी जीन्स पे उस जमाने की बात है, मेरे यानी श्रेया के साथ होती रहेंगी, सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: नीरज साहब ने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा गाने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं उनमें से ये वाला अव्वल है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, रफी साहब का था ये गाना एंड लिखने वाले थे नीरज जी। कहते हैं पोएट नीरज कह लो आप, या फिर यू नो लिरिसिस्ट नीरज कह लो, कवि नीरज कह लो, भाई बातों के शब्दों के तो वो हमेशा धनी थे। एंड दे ऑलवेज से कि नीरज जी को ना अपने होम टाउन में एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वो प्यार उनको कभी नसीब नहीं हुआ, और उस प्यार के लिए वो हर साल खत लिखा करते थे और उसे पोस्ट नहीं करते थे कभी। तो ये जो गाना है ना, लिखे जो खत तुझे, ये एक्चुअली में उनका एक खत था। एंड इस खत को पढ़ लिया था रफी साहब ने, और उन्होंने कहा अरे इसको गाने में बनाओ ना, मैं इसे गाऊंगा। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।
1: अच्छा तो हम चलते हैं,
2: फिर कब मिलोगे?
1: जब तुम कहोगे
2: जुमेरात को।
1: हाँ हाँ आधी रात को।
2: कहाँ?

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: मिर्ची साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो है। ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करें, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्चीजीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
4: आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई

0: अरमान।
1: इसी फिल्म को देखने के बाद तो सलीम जावेद साहब ने जिंदगी बदल दी थी बच्चन साहब की। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहा के साथ ये गाना फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे टू गोवा, एक ऐसी फिल्म जिसमें बच्चन साहब के साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। दी ओनली हीरोइन हु अग्रीड टू वर्क विद बच्चन साहब इन दिस फिल्म वॉज अरुणा ईरानी जी। इस फिल्म को देखने के बाद सलीम जावेद साहब ने जब लिखी थी जंजीर, उन्होंने कहा कि उनको उनका लंबा घोड़ा मिल गया है। प्यार से बच्चन साहब को लंबा घोड़ा कहते थे दोनों। वेल, जंजीर के लिए बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन द स्क्रिप्ट राइटर्स यानी द एंग्री यंग मेन सलीम एंड जावेद जी ने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई ये फिल्म करेगा, अगर उनका कोई विजय होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चन साहब होंगे। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री कि जंजीर के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सब्जेक्ट ने ऋषि कपूर को इतना इंटरेस्ट नहीं किया था, लेकिन रणधीर कपूर को किया था। एंड सुभाष कहीं चाहते थे कि उनके पास अवेलेबल तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बच्चन साहब, धर्मेंद्र जी, काका, बट ही वांटेड अ यंगर हीरो टू प्ले द रोल ऑफ मोंटी, और इसलिए ऋषि कपूर को कान पकड़ के रणधीर कपूर ले आए, और फिर तो मूवी वाज सुपर डुपर हिट। इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया श्रेया ने, कम राइट बैक।

रणधीर कपूर जी ने प्रॉमिस किया था सुभाष घई से कि वो कान पकड़ के ऋषि कपूर को ले आएंगे ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना करेक्ट इज फ्रॉम द फिल्म कर्ज। अब ये फिल्म करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ऋषि कपूर साहब। सुभाष घई ने उस टाइम पे इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम नहीं बनाया था, वो यू नो इनिशियल स्टेज पे थे, बट वो ये री इनकारनेशन पे, पुनर्जन्म पे फिल्म बनाना चाहते थे।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना, उसका बाना, सका
1: बाना।
3: हेलो
4: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल लग
4: रहा है? नहीं, मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
5: मेरी बात है, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सलीम और जावेद की जोड़ी टूटने के बाद ये पहली फिल्म थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना इस फ्रॉम द फिल्म बेताब, यानी धर्म पाजी के बेटे सनी देओल की डेब्यू फिल्म। और धर्म पाजी वाज द वन जिन्होंने अपने दोस्त जावेद अख्तर को ब्रेक दिया जब इन दोनों की, सलीम और जावेद की जोड़ी टूट गई। सो दिस बिकेम द फर्स्ट फिल्म जो जावेद अख्तर साहब ने एज एन इंडिपेंडेंट राइटर लिखी थी। वेल, पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया और इसी फिल्म बेताब का गाना आपके लिए था। अब भाई जल्दी से वापस आओ क्योंकि अगली फिल्म के बारे में भी तो बताना है। सो कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी फिल्म का है जो थ्रिलर फिल्म थी लेकिन इट वाज नोन मोर फॉर इट्स म्यूजिक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस फिल्म के लिए अपना फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट रफी साहब ने गाया है ये गाना। बताओ बताओ कौन सी फिल्म का है? करेक्ट, मूवी का नाम कर्ज, जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बैक्ट फिल्म फेयर अवार्ड। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आबू श्रेया के साथ अब चले हाईवे पे। ऑलराइट, जाने से पहले एक हाईवे हिट जो मैं डेडिकेट करके जाती हूँ आज वाला ना, किसी को डेडिकेट करने का मन नहीं है। ये एक ऐसा गाना है जो हम सबको पसंद है, और कभी कभी तो जब हम अकेले बैठते हैं ना तो इस गाने को सुन रहे होते हैं, स्पेशली इफ़ वी आर रेट्रो फैंस। मुकेश जी की आवाज़ है और गाना कौन सा है ये तो अभी आप सुन ही लोगे। तो ये सबका फेवरेट है, इसीलिए किसी खास बंदे के लिए नहीं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। On that note, this is Shreya signing off. Facebook or Insta pe, my handle is RJ Shreya with love. That's RJ SHREYA Shreya with love. To is awaaz ke piche ka chehra dekhna ho, to wahan aa sakte ho. Kuch vartalap karni ho, vartalap, to wo bhi kar sakte ho. Good night.

0: फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस ट्रेंड को अच्छे से फॉलो किया जाए।
1: श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नहीं नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं वो इंस्टाग्राम पे चल रहे 80s ट्रेंड्स की बात कर रही हूँ, नहीं यार, मैं तो बात कर रही हूँ बुक एडाप्टेशन के ट्रेंड की। बाबू मोशाए, सो बेसिकली जिस हिसाब से हॉलीवुड की फिल्मों को इंडिया में भी प्यार मिल रहा है, तो मैंने सोचा एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म की बात करूं जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं, क्योंकि जिस नॉवल से ये मूवी इंस्पायर्ड है मैं करंटली वो नॉवल पढ़ रही हूं, और उसका नाम है द लव हाइपोथेसिस बाय एली हेजलवुड, जिसको डायरेक्ट किया है डायरेक्टर क्लेयर स्कैनलन ने। इनके कुछ काम के नाम आपको याद दिलाना चाहती हूँ। फिल्म सेट इट अप याद होगा आपको, साल 2018 में आई थी। इनफैक्ट आपको अगर अक्लेम्ड कॉमेडी सीरीज लाइक द ऑफिस, ब्रुकलिन 99 या द गुड प्लेस पसंद है, तो बाबू मोशाए डायरेक्टर क्लेयर ने इन सीरीज के एपिसोड्स भी डायरेक्ट किए हैं। सो अगर इस फिल्म के प्रमाइस की बात करें ना, तो यहाँ फेक डेटिंग अरेंजमेंट की जाती है बिटवीन अ पीएचडी कैंडिडेट एंड एन इंटिमिडेटिंग प्रोफेसर, जो इवेंचुअली रियल केमिस्ट्री में तब्दील कर जाती है। और अगर ये कहानी का कॉन्टेक्स्ट सुन के आपके दिमाग में लड्डू फूट रहे हैं, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, ये मूवी प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम करना शुरू होगी फ्रॉम द 23rd of September। तो उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। बाकी ऐसे ही कोई अडेप्टेड मूवी अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बकवा दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं।
1: मैं कल को अरे लेंस ऐसे
0: पूरे कपड़े
1: कौन से, मैंने शेरवानी पहना रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: अरे
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर, आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। तृप्ति डिमरी और सैफ अली खान को साथ देखना चाहोगे? वेल, ये सुन के ही आई एम क्वाइट एक्साइटेड यार। सो बेसिकली कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बी टाउन की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और उनके हस्बैंड कमल अमरोही के ऊपर ना एक बायोपिक बन रही है। इट इज गोइंग टू बी अ सीरीज जिसमें कमल अमरोही का रोल निभाते नजर आएंगे सैफ अली खान और तृप्ति डिमरी होंगी मीना कुमारी। सो बेसिकली इन दोनों का रिलेशनशिप वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल शादी। कमल अमरोही 34 के थे, मीना कुमारी 18 की थी जब ये दोनों मिले और उसके एक साल बाद दोनों की शादी भी हो गई। बट सुनने में आता है कि कमल अमरोही वॉज क्वाइट अब्यूजिव विद मीना कुमारी, जिस वजह से 8 साल बाद इनकी शादी टूट भी गई। इंटरेस्टिंग राइट? वेल, इस सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा और उनके तरफ से तो फिलहाल ये स्टेटमेंट आई है कि भाई ये सारी चीजें जो फिलहाल आप सुन रहे हैं कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। बट इमेजिन सैफ अली खान एंड तृप्ति डिमरी टुगेदर, अच्छा लगेगा यार। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार एंट्री मार रहे हैं, वो भी एक विलन के अवतार में, और ये विलन नॉर्मल सा नहीं होगा। हिज कैरेक्टर इज गोइंग टू हैव ह्यूमर मैडनेस एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी एज द कोर। वेल, इन तीन चीजों के लिए तो अक्षय कुमार को ऐसे भी हम प्यार करते हैं यार। भाई ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे तो कमाल नहीं धमाल मचा रही है ये फिल्म। मैं बात कर रही हूँ मिर्जापुर द मूवी की, जो 200 करोड़ क्लब में पहुंच चुकी है। बाकी इस सीरीज के बिग स्क्रीन अडेप्टेशन को जिस हिसाब से ग्लोबली रिसीव किया है ऑडियंस ने, स्पीक्स वॉल्यूम। वरना तो रिसेंटली प्रियदर्शन डायरेक्टोरियल हैवान भी आई, जिसके थ्रू सैफ अली खान और अक्षय कुमार 18 सालों बाद एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आए। बट मूवी देखने के बाद मेरा मन कर रहा था कि यार अपनी आंखें फोड़ लूं। एनीवे, मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड यस लाइक एवरी डे इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्म जी। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज मेरे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है दीपक जी। कैसे हैं सर?
3: बढ़िया, बताइए।
0: ओके, मुझे तो डर लग रहा है आपके साथ ये गेम खेलने में। पता चला आपने एक बार में ही खत्म कर दिया गेम मेरा।
3: नहीं,
0: मुझे ये बात बोलनी चाहिए आपको, आप छोड़ते ही नहीं, आपके अंदर का फिल्मची जो है ना एकदम बाहर ही आ जाता है। लेट स्टार्ट, देखते हैं आज कैसा होता है।
3: देखते हैं
0: जी। करीना और शाहिद की लास्ट फिल्म एक साथ,
3: उड़ता पंजाब।
0: उड़ता पंजाब में हॉकी प्लेयर कौन है?
3: ये आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट किस फिल्म में तमिल स्टूडेंट बनी है?
3: टू स्टेट्स, अर्जुन कपूर के साथ आई थी।
0: क्या बात है। टू स्टेट्स में मेल लीड कौन है?
3: अर्जुन कपूर।
0: अर्जुन कपूर की फिल्म जिसमें वो हाउस हस्बैंड बने हैं,
3: की एंड का।
0: की एंड का में किया साहनी का रोल किसने प्ले किया है?
3: करीना कपूर।
0: करीना कपूर किस फिल्म में भैया जी की सेक्रेटरी बनी है?
3: पैशन।
0: बिल्कुल।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: Only on Mirchi, it's hot.
2: Breaking news, Mirchi पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy, New York. It's hot.
1: Yeah. Meaty Mercy. Brighten up your day, we will find a way. On Meaty Mercy,
2: Mirchi pe khela ho be.
3: Shruti, Shruti, Shruti.
4: Main to badi filmi hu.
2: एक्सक्यूज मी, यहाँ इस खेल में हम मिर्ची फिलमची ढूंढते हैं, आप अपने दिमाग के घोड़े इधर उधर ना दौड़ाएं। हाय, सो बेसिकली इट्स टाइम टू फाइंड अनदर मिर्ची फिलमची। इस गेम की शुरुआत हमने की थी दीपक जी के साथ और अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं हार्दिक। तो हार्दिक कैसे हो आप?
5: मस्त हूँ, आप बताओ?
2: अरे वाह, मस्त सुन के मैं भी मस्त हूँ अब तो। द क्वेश्चन वॉज की फिल्म टशन में भैया जी का रोल किसने प्ले किया है?
5: अनिल कपूर।
2: वेरी नाइस। अनिल कपूर की फिल्म जो टोटली क्रूज पे शूट की गई है?
5: दिल धड़कने दो।
2: वाओ, दिल धड़कने दो में रणवीर सिंह की बहन कौन बनी है?
5: प्रियंका चोपड़ा।
2: प्रियंका चोपड़ा का आइटम सॉन्ग किस मूवी में है जिसमें वो रख पॉकेट में घोड़ा दे घोड़े को लगाम बोलती है?
5: रामलीला।
2: वेरी नाइस। गोलियों की रासलीला रामलीला में लीला का रोल किसने प्ले किया है?
5: दीपिका।
2: दीपिका किस फिल्म में झूमर के नीचे मरती है?
5: ओम शांति ओम।
2: बहुत बढ़िया। ओम शांति ओम में दीपिका को झूमर के नीचे मारता कौन है?
5: अर्जुन रामपाल अपने मेजर इकबाल।
2: मेरा अगला सवाल यही है, अर्जुन रामपाल ISI एजेंट मेजर इकबाल किस फिल्म में बने?
5: धुरंधर।
2: धुरंधर में हमजा को अंडरकवर एजेंट कौन बनाता है?
5: आर माधवन।
2: बहुत बढ़िया। आर माधवन को फोटोग्राफी

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virpa, la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
1: नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है।
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दू
2: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया।
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया है मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू कु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: अब राइट्स खरीदने का बीड़ा कौन उठाएगा?
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही थॉट आता होगा कुछ डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के दिमाग में जब वो किसी हॉलीवुड फिल्म का रीमेक बनाने की सोचते होंगे। हाँ, वैसे तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑफिशियल रीमेक्स बने हैं ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स आफ्टर परचेजिंग द राइट्स ऑफ द ओरिजिनल मूवी, जैसे लाल सिंह चड्ढा जो टॉम हैंक्स स्टारर फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। बट अदर देन ऑफिशियल रीमेक्स, बहुत सारे अनऑफिशियल रीमेक्स हैं जिनकी बात मैं आज कर रही हूँ पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू। स्पेशली इन मूवीज को इंस्पायर्ड मूवीज बोलते हैं। खैर, इस लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द फिल्म पार्टनर जो साल 2007 में आई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म ब्लैक जो साल 2005 में आई थी। संजय लीला भंसाली डायरेक्टोरियल, ये फिल्म इंस्पायर्ड थी फ्रॉम द लाइफ ऑफ हेलन केलर and her tutor. So all in all, the movie was inspired by Keller's autobiography and a 1962 American film jiska naam tha The Miracle Worker, jo apparently based tha usi autobiography ke upar. So starring Amitabh Bachchan and Rani Mukherjee in the lead roles, the film narrates the tale of a deaf and blind student and her elderly teacher. काफी खूबसूरत फिल्म थी ये, बट जब आप द मिरेकल वर्कर देखेंगे या फिर हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी। बट आई वुड से दैट ब्लैक डिड डू जस्टिस विद केलर्स ऑटोबायोग्राफी। मूविंग ऑन इन द लिस्ट नंबर 3 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म हे बेबे जो साल 2007 में आई थी। सो साजिद खान डायरेक्टोरियल इस फिल्म में, अक्षय कुमार, फरदीन खान और रितेश देशमुख लीड रोल्स में नजर आए। एंड दिस फिल्म इज लूजली बेस्ड ऑन अ मलयालम फिल्म विच इन टर्न वॉज अडेप्टेड फ्रॉम द हॉलीवुड फिल्म थ्री मैन एंड अ बेबी। वेल, ये फिल्म रिवॉल्व करती है तीन बैच

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: काफी पुराने टाइम से होता आ रहा है ये।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। मालूम हो शायद आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं कुछ अनऑफिशियल रीमेक्स ऑफ हॉलीवुड फिल्मों की बात कर रही हूँ। और ये काफी टाइम से होता आ रहा है कि प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स कुछ हॉलीवुड फिल्मों का अनऑफिशियल रीमेक्स तैयार करते हैं, बॉलीवुड रीमेक्स तैयार करते हैं इन द नेम ऑफ इंस्पिरेशन। सो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द फिल्म पार्टनर, देन वी टॉक्ड अबाउट द फिल्म ब्लैक एंड हे बेबी। अब नंबर चार पे मैं बात करना चाहती हूँ 1997 में आई फिल्म चाची 420। वो गाना याद है, चुप चुपड़ी चाची चाची रे। और किसको पता था कि कमल हसन स्टारर ये कल्ट क्लासिक इज अ रीमेक ऑफ हसन 1996 तमिल मूवी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों ही फिल्में जो रही ना, हिंदी हो या तमिल हो, उसमें कमल हसन का जो कैरेक्टर है इट इज रफली बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ रॉबिन विलियम्स फ्रॉम द फिल्म मिसेस डाउटफायर। हाँ, इस फिल्म को हम देसी वर्जन बोल सकते हैं ऑफ दैट फिल्म, बट ऑनेस्टली पर्सनल लेवल पे मुझे ये फिल्म उसके ह्यूमर के लिए काफी ज्यादा पसंद आई थी। मतलब जो एलिमेंट्स इसमें डाले गए हैं, ओ हो हो हो हो। खैर, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर पांच पे फिल्म गजनी के बारे में, जो साल 2008 में आई थी। और अगर आपको लगता है कि ये फिल्म एक तमिल फिल्म से इंस्पायर्ड है, नहीं नहीं नहीं, आमिर खान की ये मूवी जिसको डायरेक्ट किया था ए आर मुरुगदॉस ने, वो ऑफकोर्स 2005 में आई तमिल फिल्म का रीमेक है with the same name, directed by the same director, but the Tamil film was inspired by Christopher Nolan's Memento. In fact, ek interview mein Nolan ne ye reveal kiya ki he hadn't seen this Tamil or Hindi film, but had heard of its commercial success. But yaar, jo bhi bolo, original...

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। तृप्ति डिमरी और सैफ अली खान को साथ देखना चाहोगे? वेल, ये सुन के ही आई एम क्वाइट एक्साइटेड यार। सो बेसिकली कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बी टाउन की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और उनके हस्बैंड कमल अमरोही के ऊपर ना एक बायोपिक बन रही है। इट इज गोइंग टू बी अ सीरीज जिसमें कमल अमरोही का रोल निभाते नजर आएंगे सैफ अली खान और तृप्ति डिमरी होंगी मीना कुमारी। सो बेसिकली इन दोनों का रिलेशनशिप वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल शादी। कमल अमरोही 34 के थे, मीना कुमारी 18 की थी जब ये दोनों मिले और उसके एक साल बाद दोनों की शादी भी हो गई। बट सुनने में आता है कि कमल अमरोही वॉज क्वाइट अब्यूजिव विद मीना कुमारी, जिस वजह से 8 साल बाद इनकी शादी टूट भी गई। इंटरेस्टिंग राइट? वेल, इस सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा और उनके तरफ से तो फिलहाल ये स्टेटमेंट आई है कि भाई ये सारी चीजें जो फिलहाल आप सुन रहे हैं कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। बट इमेजिन सैफ अली खान एंड तृप्ति डिमरी टुगेदर, अच्छा लगेगा यार। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार एंट्री मार रहे हैं, वो भी एक विलन के अवतार में, और ये विलन नॉर्मल सा नहीं होगा। हिज कैरेक्टर इज गोइंग टू हैव ह्यूमर, मैडनेस एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी एज द कोर। वेल, इन तीन चीजों के लिए तो अक्षय कुमार को ऐसे भी हम प्यार करते हैं यार। भाई ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे तो कमाल नहीं धमाल मचा रही है ये फिल्म। मैं बात कर रही हूँ मिर्जापुर द मूवी की, जो 200 करोड़ क्लब में पहुंच चुकी है। बाकी इस सीरीज के बिग स्क्रीन अडेप्टेशन को जिस हिसाब से ग्लोबली रिसीव किया है ऑडियंस ने, स्पीक्स वॉल्यूम। वरना तो रिसेंटली प्रियदर्शन डायरेक्टोरियल हैवान भी आई, जिसके थ्रू सैफ अली खान और अक्षय कुमार 18 सालों बाद एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आए। बट मूवी देखने के बाद मेरा मन कर रहा था कि यार अपनी आंखें फोड़ लूं। एनीवे, मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

छड़ी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

गणपति बप्पा के आने की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? कि घर वही होता है, लोग वही होते हैं, लेकिन माहौल बिल्कुल बदल जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कहीं मोदक बन रहे हैं, कहीं फूलों से सजावट हो रही है, कहीं आरती की तैयारी हो रही है, और घर से हजारों मील दूर न्यू जर्सी में भी जब गणपति बप्पा मोरिया सुनाई देता है ना, तो मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र सब थोड़ा पास आ जाता है। और गणपति बप्पा की पर्सनैलिटी भी कमाल की है, विघ्नहर्ता भी है, बुद्धि के देवता भी है, और सेलिब्रेशन का सेंटर भी। मतलब मैसेज बहुत ही सिंपल है, मुश्किलें आए तो रास्ता निकालो, काम शुरू करो तो बुद्धि से करो, और खुशी का मौका मिले तो दिल खोल के मनाओ। तो आज मुझे ज़रूर बताइए, क्या आपके घर में गणपति ट्रेडिशन क्या है? मोदक, आरती, डेकोरेशन, या वो ज़ोर से निकला हुआ गणपति बप्पा मोरिया? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मेरी तरफ से आप सभी को गणेश

उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और बप्पा आए हैं तो अगला गाना भी सेलिब्रेशन वाला तो बनता है। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गायब
1: नहीं दीदी, मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

हर घर की समर की ना अपनी एक सिग्नेचर साउंड होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गर्मी शुरू होते ही कुछ आवाजें रोज सुनाई देने लगती है, फैन फुल स्पीड पे, आइस ट्रे खुलने की आवाज, और फिर किचन से ब्लेंडर का चलना। बस उसके बाद सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ, ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले सिप के बाद बस एक ही ख्याल है, काश ग्लास थोड़ा और बड़ा होता। और घर में अगर चार लोग हो ना तो ब्लेंडर एक बार नहीं, चार चार बार चलता है, क्योंकि हर कोई कहता है यार मेरे लिए भी बना दो। उसकी डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है, और शायद इसीलिए मैंगो लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, समर का एक रिचुअल है। और उसी रिच आम का स्वाद लाया है दीप अल्फोंसो मैंगो पल्प। तो आज ही ले आइए अपने नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
2: गणपति की कुछ मेमोरीज फोटो एल्बम में नहीं, आवाजों में सेव होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सुबह सुबह आरती की घंटी, बिल्डिंग में बच्चों की भागदौड़, किचन से आती हुई मोदक की खुशबू और दूर से सुनाई देता ढोल ताशा। और अगर आप भी महाराष्ट्र में बड़े हुए हो तो गणपति के वो कुछ दिन ना, मतलब स्कूल, होमवर्क, रूटीन, सबके बीच एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यार, सालों बाद यहाँ अमेरिका में बैठे हुए भी बस कोई गणपति बप्पा मोरिया बोल देना तो हमारी मेमोरीज का दरवाजा खुल ही जाता है। तो आज नॉस्टैल्जिया टेस्ट करते हैं, आपकी सबसे पहली गणपति मेमोरी क्या है? घर का गणपति, सोसाइटी का पंडल, मोदक, आरती या विसर्जन? डीएम करके जरूर बताइए @RJMirchiSiddhi ऑन इंस्टा। और मेमोरीज की गली खुल ही गई है तो अगला गाना भी बप्पा के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है। मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

बॉलीवुड में हीरो की एंट्री के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, लेकिन बप्पा की एंट्री होती है ना तो पूरा थिएटर ही एनर्जी पकड़ लेता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए, अग्निपथ का देवा श्री गणेशा, शाहरुख खान के डॉन का मोरिया रे, बाजीराव मस्तानी का गजानना और वास्तव की गणपति आरती, मतलब बॉलीवुड ने ना बप्पा को सिर्फ बैकग्राउंड में ही नहीं रखा है, कभी सेलिब्रेशन, कभी इमोशन और कभी स्टोरी के एक पावरफुल मोमेंट का हिस्सा बनाया है। और शायद इसीलिए गणपति सॉन्ग्स का ना अपना ही जॉनर बन चुका है। पहले बीट सुनाई देती है, फिर वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ता है और उसके बाद मोरिया बोलने से ना हमें कोई रोक ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आप भी बताइए आपका अल्टीमेट बॉलीवुड गणपति सॉन्ग कौन सा है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और इस गणपति सीजन मेरी तरफ से वॉल्यूम थोड़ा ऊपर कर लो, क्योंकि बप्पा मोड ऑन हो चुका है, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La vieta la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लग
2: रहा है? नहीं, मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

परफेक्ट टाइम जैसी चीज होती भी है या हम सिर्फ उसका वेट ही करते रहते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और लाइफ में हम अक्सर सोचते हैं कि वेदर बेटर हो जाएगा, मार्केट सेटल हो जाएंगे, रेट्स चेंज हो जाएंगे और फिर हम डिसीजन लेंगे। लेकिन हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है अपनी प्रिपरेशन, अपना बजट और अपने ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग। होम बाइंग में भी सवाल सिर्फ वेट करें या नहीं इसका नहीं होता, सवाल होता है आपकी सिचुएशन के लिए राइट मूव क्या है। और इसी वेटिंग वर्सेस रेडीनेस को डीकोड करने के लिए मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची का।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइम पास करना भी एक आर्ट होता है। शाम शाम लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी। और कुछ लोग 10 मिनट में बोर हो जाते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक सिग्नल को भी एंटरटेनमेंट बना देते हैं। मतलब सोचिए ना, वेटिंग रूम में ग्रोसरी लाइन हो या किसी को पिक करने जाना हो और सडनली 15 मिनट फ्री मिल जाते हैं, तो कोई रील्स खोलता है, कोई पीपल वॉचिंग शुरू करता है, कोई रैंडम ओल्ड फोटोज देखने लगता है, और कुछ लोग तो यार गाड़ी में बैठ कर ही फुल बॉलीवुड कॉन्सर्ट कर लेते हैं। तो मुझे तो लगता है हर इंसान का ना अपना सिग्नेचर टाइम पास होता है। तो मुझे जरूर बताइए कि आपका जीरो बजट इंस्टेंट टाइम पास क्या है? म्यूजिक, चाय, पीपल वॉचिंग या बस रील स्क्रोलिंग? डीएम मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और चलिए आज के टाइम पास को थोड़ा क्लास दे देते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड ट्रैक के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू के हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

वीकेंड आने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल, पॉपकॉर्न थिएटर वाले चाहिए या घर के सोफे वाले? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, वीकेंड की तैयारी पहले से ही शुरू, क्योंकि इस हफ्ते एंटरटेनमेंट की प्लेट में ऑप्शंस कई सारे हैं। सितंबर 18 के आसपास वॉच लिस्ट में डायरिया, लस्ट स्टोरीज 3 और वाइब जैसे नए टाइटल्स आ रहे हैं। क्राइम से लेकर रिलेशनशिप्स और हाई एनर्जी एडवेंचर तक मूड के हिसाब से अलग अलग चॉइसेस अवेलेबल है। और मुझे तो लगता है वीकेंड प्लानिंग का ना एक नया डिपार्टमेंट ऑफिशियली ऐड हो चुका है कि क्या देखना है। मतलब पहले डिसाइड करो थिएटर या ओटीटी, फिर जॉनर डिसाइड करो, फिर सबकी चॉइसेस मैच करो, और आधा टाइम तो यार ट्रेलर देखने में ही निकल जाता है। तो इस वीकेंड आपका स्क्रीन मोड क्या है? थ्रिलर, रोमांस, कॉमेडी या फिर फुल ऑन बॉलीवुड मसाला? डीएम में ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। यार तब तक स्क्रीन बाद में चूज करना, क्योंकि गाना मैंने आपके लिए ऑलरेडी चूज कर लिया है, उसमें बिल्कुल देरी नहीं होगी। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीति चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है. क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: हैं
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी?
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: क्या गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस लगाया.
1: क्या गया तुम्हारा?
2: उसमें ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.

0: का 5 रुपए का लगा, आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
1: अच्छा सर,
0: मुझे चाहिए अपनी वापस।
1: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
0: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
1: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
2: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
0: तो जान निकाल दी हमारी।
2: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
0: कुकड़ू कु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

एक सूटकेस में कितने सपने फिट हो सकते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी कोई पढ़ने या करियर के लिए दूसरे देश जाते हैं ना, सूटकेस में कपड़े कम होते हैं लेकिन उम्मीदें ज़्यादा होती है। हर फ्लाइट एक नई बिगनिंग लेकर उड़ती है। और अगर आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है और हेल्थ केयर फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो एम्स एजुकेशन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाया है। एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए F1 वीज़ा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने पर I-20 इशू की जा सकती है। एक्सप्लोर कीजिए सर्जिकल, MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, एनेस्थीशिया और न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज के AAS डिग्री प्रोग्राम्स। और साथ ही रेपिटेड मेडिकल सेंटर्स में अनपेड क्लिनिकल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, जो देते हैं रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आज ही विजिट कीजिए aimseducation.edu। एम्स एजुकेशन, स्टडी इन अमेरिका, ट्रेन इन हेल्थ केयर एंड टेक योर करियर फॉरवर्ड। और चलिए, सपनों की बातें हो रही है तो सपनों से भरा ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

टाइम पास करना भी एक आर्ट होता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ लोग 10 मिनट में बोर हो जाते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक सिग्नल को भी एंटरटेनमेंट बना देते हैं। मतलब सोचिए ना, वेटिंग रूम में, ग्रोसरी लाइन हो या किसी को पिक करने जाना हो, और सडनली 15 मिनट फ्री मिल जाते हैं। तो कोई रील्स खोलता है, कोई पीपल वॉचिंग शुरू करता है, कोई रैंडम ओल्ड फोटोज देखने लगता है, और कुछ लोग तो यार गाड़ी में बैठ कर ही फुल बॉलीवुड कॉन्सर्ट कर लेते हैं। तो मुझे तो लगता है हर इंसान का ना अपना सिग्नेचर टाइम पास होता है। तो मुझे जरूर बताइए कि आपका जीरो बजट इंस्टेंट टाइम पास क्या है? म्यूजिक, चाय, पीपल वॉचिंग या बस रील स्क्रोलिंग? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए आज के टाइम पास को थोड़ा क्लास दे देते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड ट्रैक के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है, हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखो, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो, हैं ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: Only on Mirchi, it's hot.
2: Har gana hit, har dusra gana super hit.
3: Only on Radio Mirchi, it's hot.
4: Sham Sharda, let's do nautanki, have a funky time.
5: घर में चार लोग और चार अलग मूड्स हो तो OTT चूज करना भी ना फैमिली मीटिंग बन जाती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और इस वीकेंड तो मीटिंग और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हिस्ट्री और एक्शन का मूड है तो द रिवॉल्यूशनरीज, जहां भुवन बम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह प्रजिता यंग फ्रीडम फाइटर्स की कहानी लेकर आ रहे हैं। क्राइम थ्रिलर चाहिए तो घमासान में अरशद वारसी और प्रतीक गांधी आमने सामने, और फैमिली के साथ कुछ हल्का फुल्का देखना है तो चुंबक में नीना गुप्ता, सुमित व्यास और देवन भोजानी के साथ कॉलोनी वाली कॉमेडी केओस लेकर रेडी रहने वाले हैं। मतलब यार एक स्क्रीन लेकिन मूड के हिसाब से 3 कंप्लीटली डिफरेंट डेस्टिनेशन। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आप OTT पर जॉनर चूज करते हो, स्टोरी देखते हो, या कास्ट देखते ही प्ले का बटन दबा देते हो? जरूर बताना ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi, और वैसे वॉच लिस्ट तो आप संभाल ही लेंगे, प्ले लिस्ट हम संभाल लेते हैं। अगला बॉलीवुड गाना मिर्ची पर, ओनली फॉर यू, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गानों की ना एक अलग ही दुविधा है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, पहु आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी ना गाना याद रह जाता है लेकिन फिल्म ही याद नहीं रहती, और मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। कभी किसी रेस्टोरेंट में या रेडियो पर एक गाना बजता है और दिमाग तुरंत बोलता है कि अरे वाह क्या गाना है, पर अगला सवाल शुरू हो जाता है कि ये किस मूवी का गाना था, और बस फिर पूरा बॉलीवुड क्विज शुरू हो जाता है। कोई एक्टर याद आ जाता है, कभी कोई सीन याद आ जाता है, कोई कॉस्ट्यूम तक याद आ जाता है, लेकिन मूवी का नाम लास्ट में याद आता है। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सॉन्ग्स इतने पावरफुल होते हैं कि फिल्म भले ही भूल जाओ लेकिन गाने नहीं भूलते। वैसे आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा बॉलीवुड गाना है जिसका ट्यून आपको अच्छे से याद है लेकिन मूवी का नाम याद करने में सदियां लग जाती है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं अगला गाना आप कौन सी मूवी का है ये पहचान पाते हो या नहीं। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन था, उसकी शादी के फोटो बना दिया यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो मतलब ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं।
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: अरे
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी। हेलो, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर। आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज का हंगामा आ रहा है एक ड्रीमी सॉन्ग के पीछे से। जी हाँ, पहला नशा। अब ये गाना आपने पर्दे पे तो देखा ही होगा, तो जब हम ये गाना पर्दे पे देखते हैं ना, तो यार लगता है कि एकदम स्लो मो में चल रहा हो। मतलब आमिर खान और आयशा झुलका के बीच वो ड्रीमी वॉक, एकदम फर्स्ट लव वाइब। पर पर्दे के पीछे की बात तो ये है कि उस वक्त बॉलीवुड में स्लो मो कैमरा टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो डायरेक्टर मंसूर खान ने जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को ना अब लिटरली स्लो मो में रन और मूव करना है, और बाद में कैमरा स्पीड और एडिटिंग से वो स्लोमो वाला इफेक्ट क्रिएट किया गया। मतलब रोमांस स्क्रीन पे तो बिल्कुल स्मूथ था और पर्दे के पीछे सब बस धीरे धीरे चल रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में भी ना ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। वैसे आप भी बताना कि पहला नशा सुन के आपको किसकी याद आती है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तेरी मम्मी की जय।

रिन सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीन तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: चुप हो है बादशाह।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है सीधा DDLJ से। जी हां, वही आइकॉनिक क्लाइमैक्स सीन जहां राज सिमरन के पीछे दौड़ रहे हैं, ट्रेन चल रही है, हाथ पकड़ने का मोमेंट और बैकग्राउंड में हिस्ट्री बन चुकी है। वैसे तो यार स्क्रीन पे लगता है कि सब परफेक्टली प्लान था, पर पर्दे के पीछे सीन थोड़ा रिस्की था। जी हां, ये सीन किसी ग्रीन स्क्रीन पर नहीं बल्कि एक रियल चलती ट्रेन पर शूट हुआ था। और SRK एक्चुअली मूविंग ट्रेन के फुटबोर्ड पर लिटरली लटके हुए थे। कोई फैंसी सेफ्टी हार्नेस नहीं था, कोई CGI नहीं, सिर्फ बैलेंस, ट्रस्ट और आदित्य चोपड़ा का कॉन्फिडेंस। एक गलती और राज स्विट्जरलैंड नहीं, सीधा प्लेटफॉर्म पर होते। वैसे क्रू का पल्स थोड़ा हाई था, लेकिन डायरेक्टर का फोकस टाइट था और कैमरा बोल रहा था कि ये शॉट मिलेगा ना तो पिक्चर हिट है बॉस। तो जी हाँ, आज भी एक टेक, एक मोमेंट और बॉलीवुड को मिल गया था वो आइकॉनिक शॉट जिसे आज तक का हमारा सबसे बड़ा रोमांटिक एंडिंग बोला जाता है। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में रोमांस सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक से नहीं बट कभी कभी थोड़े रियल रिस्क से भी बनता है। और ऐसे ही पर्दे के पीछे की फिल्मी हंगामे चाहिए तो मुझे जरूर बताना। DM ऑन इंस्टाग्राम @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए DDLJ का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए @ मिर्ची जीतूराज, समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज, only on मिर्ची, it's hot.

मिर्ची मंडे ग्रूव्ड ऑलरेडी लॉक और वीक का रिदम दोस्तों सेट हो चुका है विद दिस शो शाम शानदार लाइव विद योर वन एंड ओनली मिर्ची सिद्धि। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि मैं आपको टाटा बाय बाय सायोनारा कह दूं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हमारी रोशी आने वाली है लव के कुछ फंडे लेकर। क्योंकि यार अगर आज के लोकल अपडेट्स म्यूजिक ओटीटी पिक्स के साथ अगर आपका मूड सेट हो चुका है तो थोड़ी यार लव लाइफ पे भी ध्यान दे दो विद रोशी के फंडे। तो कहीं ना जाइए, बने रही हमारे साथ। Right here on Mirchi. This is Mirchi Siddhi signing off.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आज पिर जीने की तमन्ना है, ये लाइन आज के दिन कोई नहीं गाता, लेकिन आज फिर मरने का इरादा है, ये लाइन सब गाते हैं आज के दिन. तो बताओ दिन कौन सा हुआ. यू आर राइट. वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ मिर्ची इंस्टा प्यार ऑन अ मंडे. लेकिन आपके मरने के इरादे को कन्वर्ट करने के लिए आई हैव सो मच लाइंड अप फॉर यू डार्लिंग कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. तो अपने मरने के प्लान को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, वो ऑफिस की वजह से हो या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की वजह से हो. आई विल गिव यू 3 गुड रीजंस टू नॉट किल योरसेल्फ टुडे. उनमें से एक ये है कि अगर आपने मेरे साथ लव गेम खेली तो आपको हो सकता है मिल जाए ढेरों किसेस. जस्ट दैट शुड बी रीजन इनफ, नहीं? और आज मंडे की शाम को मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी ऐसा लव अफेयर हुआ है जिसके बारे में सोच के आप अपनी नस काटना पोस्टपोन कर देते हो. अगर हाँ, देन हिट मी अप विद योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La virba, la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ, नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो
1: एक क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डल रहा है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दें।
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है।
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR, दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर, आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया।
1: उसमें
2: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।